एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून 2026। अभी सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। अभी सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में

0: श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं।
2: ये है विविध भारती।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

Washington. किताबें अनगिनत हैं और समय कम है। ज्ञान का रहस्य यह है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे।
4: और इसी के साथ आज का वंदनवार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 होने को है और आइए आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 219। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला गजतत वाद्य। इस कार्यक्रम का भाग 3 आज आप सुनेंगे कलाकार डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति चारूबाला खरे की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:00 और 7:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:00 समाचार प्रभात और इसी के तुरंत बाद 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम दिन में 2:00 पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30। आनंद लीजिएगा नए फिल्मी गीतों का। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता भारत भूषण पर। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:30 और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा रात 9:30 पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनेंगे कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस से अमरकांत दुबे की बातचीत का भाग 2 सुबह 10:00। विविधा के अंतर्गत आज दिन में 11:00 सुनिए निर्देशक राज खोसला पर आधारित शोध और आलेख स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दिन में 12:00 सुनिए हिंदी समाचार और 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल। कमेंट्स के साथ फेसबुक पर तय कीजिए सुरीला सफर। दिन में 1:00, दिन में 2:15 पर दोपहर समाचार। सदाबहार नगमे आप सुन सकेंगे दिन में 2:30 पर और मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3:00। पर सुनिए नाट्य तरंग में नाटक अभिशप्त गांधार का भाग 2, लेखक डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। उजाले उनकी याद अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम दिन में 4:00। कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 3 हम आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। छायागीत कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:00, 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:00 सुनिए हिंदी में समाचार और शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लेखा जोखा। संध्या रंजन में सुनिए चित्रपट संगीत। संगीत सरिता शाम में 6:45 पर आप सुनेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। विशेष जयमाला आज आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र दीवान रंजित रॉय, लेफ्टिनेंट कर्नल, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज। हवा महल के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नाटिका कागज के जेवर, लेखन अभिलाष का, निर्देशन पुरुषोत्तम दारवेकर का। रात्रि के

चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा 8:15, 8:45 पर समाचार संध्या। रात्रि 9 बजे सुनेंगे आप कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि का छायागीत कार्यक्रम होगा 10 बजे, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 सुनिए ढलती जायरात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की, और अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 219।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

0: संगीत सरिता।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी, कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
3: सारंगी सुमधुर और समृद्ध साज है। यह एक ऐसा वाद्य है जो लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में ही प्रचलित है। पहले हम लोक संगीत में प्रचलित सारंगियों पर विचार करेंगे। भारत के लोक वाद्यों में सारंगी परिवार के वाद्य हैं सारंग, राजस्थान का सारिंदा, कमायचा, मध्य प्रदेश का चिकारा, बिहार का बनाम आदि विशेष गजवाद्य हैं। भारतीय लोक संगीत में गज से बजाई जाने वाली सिंधी सारंगी, जोगिया सारंगी, धानी सारंगी, गुजराथन सारंगी और अलाबू सारंगी प्रचलित होने की जानकारी मिलती है। सिंधी सारंगी सिंध प्रदेश में प्रचलित रही। वैसे लंगा जाति के लोग इसका वादन करते हैं। नाम से गुजरातन सारंगी भले ही गुजरात का लोकवाद्य प्रतीत होता हो, किंतु इसे राजस्थान के लंगा जाति के गायक अपने साथ संगत हेतु अधिक उपयोग में लाते हैं। जोगिया सारंगी संज्ञा इसलिए दी कि जोगियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता रहा। अलाबू सारंगी का प्रयोग विशेषकर जैसलमेर क्षेत्र में अधिक होता है। मंजनिया जाति के लोग अलाबू सारंगी बजाते हैं। इन सभी सारंगियों में सामान्यतः मुख्य 2 लोहे के तार, 2 तांत के तार और 9, 11 अथवा 17 तरबे लगाई जाती है। भारत की लोक परंपराओं में प्रचलित सिंधी, जोगिया, अलाबू, धानी और गुजरातन सारंगी के आकार, प्रकार, बनावट और तारों की संख्या में और इन्हें मिलाने की पद्धति में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। ये सभी सारंगियां गज से बजाई जाती है। विशेष अंचल में तथा विशेष जाति के लोगों द्वारा इसे प्रयुक्त किए जाने के कारण सारंगी के साथ इसका नाम जुड़ गया। सारंगी विशेषकर उत्तर भारत के राजस्थान, गुजरात, कश्मीर आदि भागों में प्रचलित है। सामान्यतः ये लोकगीतों के साथ संगत हेतु उपयोग में लाई जाती है। इसे खड़े रहकर और बैठकर दोनों ही प्रकार से बजाया जाता है। कुछ लोग इसे विदेशी वाद्य बताते हैं, किंतु विभिन्न सारंगियों के वर्णन से यह स्पष्ट है कि सारंगी यह पूर्णतया भारतीय वाद्य है और न केवल शास्त्रीय संगीत में बल्कि लोक संगीत में भी इसकी जड़ें गहरी जमी हुई हैं। शास्त्रीय संगीत के पुरातन पद्धति के एक कलाकार हुए उस्ताद बुंदू खां। तो आइए हम इन्हीं का रिकॉर्ड किया हुआ राग भैरवी सुनते हैं। यह रिकॉर्ड सन 1948 में किया था।

समय के अनुसार सारंगी के टोन में भी परिवर्तन होते रहा है। अभी हमने उस्ताद बुंदू खां का सारंगी वादन सुना, अब हम उस्ताद सुल्तान खां का सारंगी वादन सुनते हैं। राग है देश। इसे सुनकर पुराने और नए सारंगी के टोन का अंतर समझ में आ जाएगा।

गज तत्वाद्य, गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारुबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फागुन फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले ने। कमर जलालाबादी ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है ओपी नैयर का।

आज के इस विशेष कार्यक्रम में विशेष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भूले बिसरे गीत इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर अभिनेता और गायक कलाकार भारत भूषण को। उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम सुनेंगे उन्हीं के कुछ सदाबहार गीत जो आज भी दिलों में वही मिठास और अपनापन जगाते हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। बरसात की एक रात इस फिल्म से है, साहिर लुधियानवी ने इसके बोल लिखे हैं, रोशन का संगीत है और इस गीत को स्वर दिए हैं आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू और साथियों ने।

प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य जवानियां अपनी थी, धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं इनकी, जरा याद करो
3: भूले बिसर गीत। इस कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम मल्हार, मुकेश की आवाज़, कैफ इरफानी के बोल, रोशन का संगीत।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। चलिए आगाज करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म के गीत के साथ जिसे

0: साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत अभी आपने सुना, धुन बनाई थी रोशन ने, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की थी, फिल्म का नाम बरसात की रात।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: और आइए अब आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में सुनवाते हैं फागुन फिल्म का ये गीत। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा है, ओपी नैयर की धुन।

और अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में घूंघट फिल्म का गीत, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: Hey girls,
2: hi, congratulations.
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: खो गया इंतजाम।
6: किसका?
5: गुड्डी की फीस का।
6: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
7: RBI कहता है
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
10: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दीवाना के दीवाना, झुके हैं बादल,
1: बालों के
0: खिले हैं गुलशन,
1: गालों के
0: यही तो मौसम।

0: झुके हैं बादल,
1: बालों के
0: खिले हैं गुलशन,
1: गालों के
0: वो ही तो मौसम,
1: आंखों से भी निगाह है। सुनो जी कहना,
0: क्यों माने
1: संभल के चलना,
0: क्या जाने
1: यही तो मौसम।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता। बारीकियां रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
3: लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में अब आपको सुनाते हैं बसंत बहार फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

शैलेंद्र का रचित ये गीत सुनिए अब, जिसकी धुन बनाई है एस एन त्रिपाठी ने, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन।

इस गीत के साथ ही आज का हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार प्रभात और 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: हर खर्च के पैसे दो,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे, इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी

0: भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि

0: डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार आईएमए से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब आईसीबीएम मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमो

0: डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today.
1: इस संभावना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों एंड जॉइंटली इनॉग्रेट भारत इनोवेट्स इवेंट इन नीस टुडे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग लॉन्ग लाइफ मून लैंडर्स capable of surviving up to 200 days, says ISRO chairman, we jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora accorded a warm and enthusiastic welcome to the Prime Minister. Prime Minister Modi interacted warmly with members of the community and witnessed colourful cultural performances featuring classical Indian dance forms including Kathak, Odissi, Bharatanatyam presented by French and Italian artists.

0: दो पल की जिंदगी के दो नियम, दो पल की जिंदगी के दो नियम, बिखरो फूलों की तरह, निखरो फूलों की तरह, बिखरो खुशबू की तरह। एक नई ताजगी के साथ शुरू करते हैं संडे मॉर्निंग में आज का नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपकी दोस्त विद्या और मेरे साथ
1: अमित।
0: तो स्वीकार करें हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: और विद्या, इसी के साथ हम बता दें कि आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में हम क्या खास लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए। तो कार्यक्रम के सबसे पहले सेगमेंट यानी कि वीक रिकैप में हम बात करेंगे सप्ताह भर की कुछ खास खबरों के बारे में, और साथ ही

0: बात करेंगे, विश्व रक्तदाता दिवस की जानकारी भी हम साझा करेंगे, और अभी दो बेहतरीन वर्ल्ड कप चल रहे हैं, एक है फीफा, उस पर भी बात की जाएगी, और साथ में महिला T20 विश्व कप, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हिस्टोरिक फैक्ट की अगर हम बात करें तो इस सेगमेंट में हम जानेंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध घाट और उन घाटों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियां।
1: बिल्कुल सही कहा अमित, और उसके बाद जानकारी और मनोरंजन में आज हम बात करेंगे शहर में थीम बेस्ड कैफे की बढ़ती है लोकप्रियता पर। उसके बाद हम वॉइस ऑफ लिसनर्स में जानेंगे हमारे श्रोताओं के व्यूज आज के प्रोग्राम को लेकर। हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे 9462697568।

0: हे उदयपुर राइट्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर और सप्ताह की खास खबरों पर डाले एक नजर। क्या कुछ खास रहा अमित इस सप्ताह में, बता दे हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल,
0: मेवाड़ में आगामी दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्री मानसून शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। तेज हवा के साथ अच्छी बारिश होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल अमित, हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अच्छी बारिश हमारे उदयपुर में भी हो जाए
1: जी।
0: और अब सीधे व्हाट्सएप पर भी मिल सकेंगे प्रमाण पत्र। पहचान पोर्टल में जन्म मृत्यु पंजीयन हुआ आसान। राज्य सरकार ने आमजन की सुविधा के लिए जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन प्रक्रिया को पूरे तरीके से डिजिटल और पब्लिक फ्रेंडली बना दिया है। पहचान पोर्टल और पहचान ऐप के जरिए ई साइन प्रमाण पत्र पूरी तरीके से मान्य दस्तावेज माना गया है, जिसका सत्यापन QR कोड से किया जा सकता है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ में उदयपुर की झीलों के संरक्षण पर हाई कोर्ट सख्त हुआ है। उदयपुर की झीलों की बिगड़ती हुई स्थिति पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को झीलों में अतिक्रमण रोकने के लिए, प्रदूषण नियंत्रण और जलाशयों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
0: राजस्थान की समृद्ध

0: सांस्कृतिक विरासत, मेहमान नवाजी और लजीज पकवान की महक सात समंदर पार स्कॉटलैंड की वादियों में बिखरने जा रही है। राजस्थान की माटी से कोसों दूर स्कॉटलैंड की ऐतिहासिक राजधानी एडिनबर्ग में रविवार यानी आज दूसरा रॉयल्स डिनर होगा। प्रवासी राजस्थानियों की संस्था राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्स ने इसका बीड़ा उठाया है। यह संस्था युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और राजस्थानी कला और विरासत को सहेजने का काम कर रही है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर हल्दी घाटी में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से कई आयोजन हुए। महाराणा प्रताप के साथ माँ पन्नाधाय
1: और जलाशयों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
0: राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, मेहमान नवाजी और लजीज पकवान की महक सात समंदर पार स्कॉटलैंड की वादियों में बिखरने जा रही है। राजस्थान की माटी से कोसों दूर स्कॉटलैंड की ऐतिहासिक राजधानी एडिनबर्ग में रविवार यानी आज दूसरा रॉयल्स डिनर होगा। प्रवासी राजस्थानियों की संस्था राजस्थानी ऑर्गेनाइजेशन रॉयल्स ने इसका बीड़ा उठाया है। यह संस्था युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और राजस्थानी कला और विरासत को सहेजने का काम कर रही है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर हल्दी घाटी में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से कई आयोजन हुए। महाराणा प्रताप के साथ माँ पन्नाधाय और राणा पूंजा को भी किया नमन। महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न धार्मिक संगठनों की ओर से 17 जून को होने वाले प्रमुख आयोजनों की तैयारी भी अब अंतिम चरण पर।
1: बिल्कुल विद्या, और इसी के साथ में क्रिकेट के जितने भी पसंद करने वाले लोग हैं उनके लिए महिला T20 विश्व कप चल रहा है, और 13 जून को जो मुकाबले खेले गए थे उसके बारे में थोड़ी सी

0: हार का सामना करना पड़ा। 13 जून को टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला भी खेला गया, जिसके साथ दिन भर क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला।
1: बिल्कुल, ये थी कल खेले गए मैच की जानकारी। और आज जो मैच खेले जा रहे हैं उनके बारे में बता देते हैं। पहला मैच है बांग्लादेश महिला टीम और नीदरलैंड्स की महिला टीम के बीच में, ये मैच खेला जाएगा 2:00 PM। और दूसरा मैच है भारतीय महिला और पाकिस्तानी महिला टीम के बीच में, इसी मैच के साथ भारतीय क्रिकेट विश्व कप अभियान की शुरुआत होगी। ये मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा,
0: तो देखना ना भूले।
1: बिल्कुल।

लिसनर्स, अब जिक्र करें फीफा विश्व कप 2026 की, तो 13 जून का दिन रोमांचक मुकाबलों से भरपूर रहा। सबसे पहले ग्रुप बी के मुकाबले में कतर और स्विट्जरलैंड के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। स्विट्जरलैंड ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन मैच के अंतिम क्षणों में कतर ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया और विश्व कप इतिहास का अपना पहला अंक हासिल किया। इसके बाद सबकी नजरें ग्रुप सी के हाई वोल्टेज

0: मुकाबले पर थी, जहां 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील का सामना मोरक्को से हुआ। मोरक्को ने पहले गोल कर बढ़त बनाई, लेकिन ब्राजील के स्टार खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने बराबरी का गोल दागकर टीम को मैच में वापस लाद दिया।
1: और इसी के बाद में तीसरा मुकाबला ग्रुप सी के एक अन्य मुकाबले में स्कॉटलैंड ने हेती को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट में विजय की शुरुआत करी। स्कॉटलैंड की मजबूत रक्षा पंक्ति ने पूरे मैच में हेती को गोल करने का मौका ही नहीं दिया। और विद्या, अगर आज हम बात करें तो 14 जून है और 14 जून के दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है।
0: मैं इशारा तुम्हारा अमित समझ गई हूँ। आज है विश्व रक्तदाता दिवस। कहते हैं ना, रक्तदान महादान, ये लाइन हम हमेशा सुनते रहते हैं, पर वास्तविकता में जाने आइए इसका क्या है महत्व। इस दिन को मनाने का मकसद एक चिकित्सीय कार्य नहीं, बल्कि यह एकजुटता, करुणा और सामूहिक जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा दिन है जिसकी वजह से कितने लोगों को नया जीवन मिलता है। एक रक्तदान जो आपात स्थितियों, प्रसव, शल्य चिकित्सा, कैंसर उपचार और कई गंभीर बीमारियों के आजीवन उपचार के दौरान रोगियों की सहायता करता है।
1: बिल्कुल, विश्व रक्तदाता दिवस मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई थी। 14 जून का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन कार्ल लैंड स्टाइनर का जन्म हुआ था, और ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की और इसी काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। उनकी खोज आज हमारे देश में जो विज्ञान है या स्वास्थ्य चिकित्सा की जो चीज़ें हैं उस पर बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ रही है। साथ ही इस वर्ष की अगर थीम की हम बात करें तो गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, इसका आशय है रक्त दें आशा दें।

0: लिसनर्स, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और अमित अब हम बताएंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध घाट और उनकी जानकारी। हमारा मेवाड़ क्षेत्र जो अपने सुंदर झीलों, नदियों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ कई ऐतिहासिक और धार्मिक घाट है जो पर्यटन और आस्था के केंद्र है। आज हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हम जिक्र करेंगे मेवाड़ के प्रसिद्ध घाट और देंगे आपको इनके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात करें गणगौर घाट की, जो उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। ये लेक पिछुला के किनारे स्थित है और यहाँ गणगौर उत्सव के दौरान भव्य शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और अमित, जब भी हम शाम को जाते हैं तो यहाँ से जो महलों के दृश्य होते हैं वो काफी मनमोहक देखने को मिलते हैं हमें।
1: बिल्कुल।
0: और अभी गर्मी का समय है भी, तो आपको काफी तादाद में वहाँ मिल जाएंगे लोग। और अब बात करें दूसरे घाट की, तो अम्भराई घाट भी उसके समीप ही है। यहाँ से सिटी पैलेस और ताज लेक पैलेस का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। खूबसूरत सुबह के साथ यह घाट सनसेट के शानदार नज़ारों और फोटोग्राफी के लिए भी फेमस है।
1: जी, और हम मेवाड़ की घाट की बात कर रहे हैं तो राजसमंद का नौ चौकी घाट, हम इसके बारे में बात ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि ये घाट अपनी कलात्मक छतरियों के लिए, तोरण के लिए, सुंदर नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर राज प्रशस्ति शिलालेख भी उपलब्ध है। संगमरमर की 25 विशाल शिलाओं पर अंकित प्रशस्ति, जो कि मेवाड़ के इतिहास, संस्कृति और महाराणा राज सिंह के कार्यों का उल्लेख करती है। इसी के साथ में चित्तौड़ में जो हमारे पास में किले के अंदर 80 कुंड हैं और हर कुंड का एक घाट है, हर घाट का एक महत्व है, सबके बारे में बात करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ बेहतरीन जो घाट हैं उसमें से एक है गोमुख कुंड का घाट। ये चट्टान पर बने हुए गोमुख से निरंतर जलधारा कुंड में गिरती रहती है और मान्यता है कि ये कुंड सदियों तक दुर्गवासियों के लिए जल का प्रमुख स्रोत रहा था। गंभीरी नदी की अगर हम बात करें तो उसके तट पर भी एक बहुत सुंदर घाट बना हुआ है। यहाँ पर स्थानीय लोग धार्मिक गतिविधियों के लिए और नियमित रूप से स्नान करने के लिए आते हैं।
0: बिल्कुल, नवलखा घाट जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर्यटक बोटिंग का आनंद भी लेते हैं। और बात करें लाल घाट की, तो ये भी ऐतिहासिक महत्व वाला घाट है। पुराने उदयपुर शहर की स्थापत्य कला और पारंपरिक वातावरण को दर्शाता है। यहाँ कई धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ होते हैं। बात करें दूध तलाई झीलों की, तो यहाँ आसपास बने छोटे छोटे घाट पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ पहाड़ियों झीलों का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। मेवाड़ के घाटों का महत्व, ये घाट धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गणगौर, कार्तिक पूर्णिमा और अन्य त्योहारों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं।

0: और अमित, हम बता दें वॉइस ऑफ लिसनर्स में हमारे श्रोता आज के प्रोग्राम को लेकर हमारे जो हैं हमारा कैसा रहा प्रोग्राम उसके लिए व्यूज दे सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे 9462697568, तो प्लीज जल्दी से मैसेज कीजिए।
1: नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 9462697568।

0: ये है प्रोग्राम नमस्कार उदयपुर, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ट्रेंड की जो युवाओं से लेकर परिवारों तक सभी को आकर्षित कर रहा है। जी हाँ, जानकारी और मनोरंजन में हम बात करेंगे शहर में थीम बेस्ड कैफे की बढ़ती लोकप्रियता। आज के दौर में लोग सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि एक अनोखा अनुभव भी चाहते हैं, इसी वजह से थीम बेस्ड कैफे लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में ये लोग ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं जहाँ वे खूबसूरत तस्वीरें ले सके और अपने दोस्तों के साथ यादगार पल बिता सके, और थीम बेस्ड कैफे इसी जरूरत को बखूबी पूरा करते हैं। आज आपको शहरों में बुक कैफे, नेचर कैफे, विंटेज कैफे, मूवी थीम कैफे, म्यूजिक कैफे, यहाँ तक कि राजस्थानी संस्कृति पर आधारित कैफे भी देखने को मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल सही बात कही विद्या आपने, और इन कैफ़े के बीच में जो हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है उसका महत्वपूर्ण कारण युवा हैं, क्योंकि युवाओं को कुछ न कुछ एक्साइटिंग चाहिए, नई चीज़ें चाहिए। और अगर हम कैफ़ेज़ की बात करें तो कुछ कैफ़ेज़ हैं जो बोर्ड गेम कैफ़े, पेट कैफ़े, यानी अगर आपके घर पे पेट है, बिल्ली है, डॉग है, तो उनके लिए भी अब कैफ़े है, आप वहाँ पे अपने पेट को लेकर ईजीली जा सकते हैं। कुछ कैफ़ेज़ हैं जो आर्ट कैफ़े हैं, और कुछ कैफ़े बुक एक्सचेंज कैफ़े हैं, यानी आप जब भी वहाँ जाएंगे कुछ किताबें आपको एक्सचेंज करनी है। और सबसे खास बात, ये सारे ही कैफ़े किसी न किसी तरीके से हमारी संस्कृति को, हमारी हस्तशिल्प को, किताबों को, सांस्कृतिक विरासतों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटीरियर अगर इन कैफ़े का देखो तो बहुत ही खूबसूरत होता है। कहीं पर ग्रामीण परिवेश आपको देखने को मिलेगा तो कहीं पर बिल्कुल मॉडर्न आपको इंटीरियर नज़र आएगा।
0: बिल्कुल अमित, इन कैफ़े की खास बात यह है कि इनकी सजावट, माहौल, संगीत और मेन्यू एक विशेष थीम के अनुसार तैयार किए जाते हैं, और यही कारण है कि युवा वर्ग इनकी ओर तेज़ी से आकर्षित हो रहा है। और ये कैफ़े स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और रचनात्मक गतिविधियों को मंच प्रदान करते हैं। कुछ कैफ़े प्रकृति, संगीत, कला और किसी खास संस्कृति को दर्शाते हैं। इनकी खास सजावट लोगों को बार बार आने के लिए प्रेरित करती है। तो अगली बार

0: और जब भी आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ समय बिताने का सोचें तो किसी थीम बेस्ड कैफे का अनुभव जरूर ले सकते हैं। एक कप कॉफी के साथ आपको कुछ यादगार पल भी मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इन सभी कैफेज में सिर्फ डिजाइन और इंटीरियर ही नहीं है बल्कि यहाँ का खाना भी थीम बेस्ड होता है। यानी कि कुछ कैफेज में तो डे वाइज होता है कि मंडे को ये स्पेशल डिश मिलेगी, ट्यूसडे को ये मिलेगा, थर्सडे को ये मिलेगा, वेंसडे को ये मिलेगा, तो वो थीम रहती है हर दिन की भी, प्लस मौसम की भी थीम रहती है कि सर्दी गर्मी बरसात के हिसाब से अलग अलग जो आपको मेन्यू मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड मेन्यू है आपके पास में, तो यहाँ पर आप ये चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे।
0: और आज अपने प्रोग्राम को लेकर व्यूज जरूर दें हमें, और हमारे मोबाइल नंबर रहेंगे 9462697568। और अमित, अब हम प्रोग्राम में थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से बस कुछ ही देर में।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि, नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। श्री बिरला ने ये बात कल नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि देश की संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और विकसित भारत में भी इसका महत्व बना रहेगा। श्री बिरला ने शिक्षकों, वैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, नीति निर्माताओं और किसानों से आत्मनिर्भर कृषि मॉडल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 जवानों में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शामिल हैं। उनका आज नागौर के पैतृक गांव पांचोता में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेमाराम साल 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और देश सेवा का सपना पूरा कर रहे थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें, जीवन बचाएं।

0: रखी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी शिविर लगाया गया है, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ग्रुप कर रक्तदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। पाली सीएमएचओ ने बताया कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें रक्तदाताओं के ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच भी की जा रही है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जिनमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
1: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है, जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है। यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर, करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस बार परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। परीक्षा के मुख्य समन्वयक और वीएमओयू के कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि 1,26,600 परीक्षार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा निगरानी के लिए जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर से की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है और वहाँ ORS कॉर्नर बनाए गए हैं।
2: जिसमें इस बार की हमारी टीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा आईएनएम घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारा ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूक।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। वे कल पंजाब के लुधियाना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़े।
3: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल? पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
0: और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, साथ ही प्री मॉनसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के पारे में सबसे अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिलानी में दर्ज की गई। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात का पारा भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में

0: आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज। और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट, आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। नमस्कार, उदयपुर कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत।

0: विश्व रक्तदाता दिवस पर आइए अब सुने 107 बार रक्तदान कर चुके रविंद्र पाल सिंह कप्पू से बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे हैं अमित श्रीमाली।
1: विश्व रक्तदाता दिवस पर 107 बार रक्तदान कर चुके उदयपुर के रक्तवीर रविंद्र पाल सिंह कप्पू जी से बातचीत।
2: सबसे पहले तो आपका स्वागत है आज के हमारे इस कार्यक्रम में, और आज विश्व रक्तदाता दिवस है और इसी वजह से हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप, क्योंकि आपने अब तक सबसे ज्यादा बार उदयपुर शहर में रक्तदान किया है, लगभग 107 बार आप रक्तदान कर चुके हैं।
3: हाँ जी, बिल्कुल
2: जी। तो मैं

0: मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने जो अब तक रक्तदान किया है, इसकी शुरुआत आपने कैसे करी थी? क्या आपने सोचकर ये कोशिश आपने करना शुरू किया कि मैं ब्लड डोनेशन लगातार करता रहूँगा? और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपको प्रेरणा मिली सर?
1: मैंने जब ये मैं 18 साल का हुआ था तब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था। मेरी चित्तौड़ में मासी रहती थी, उनको फ्रेश ब्लड की जरूरत थी। मैं कॉलेज में बैठा हुआ था और मेरे नाना जी आए और मुझे अर्जेंट पकड़ के ले गए, चलो हॉस्पिटल, आपको ब्लड डोनेट करना है, मासी की तबीयत बहुत खराब है, उनको फ्रेश ब्लड की जरूरत है। तब मैं पहली बार वहाँ हॉस्पिटल गया और तब मेरे नाना जी ने वहाँ मुझे ब्लड डोनेट करवाया और वो तब से वो पहली बार मेरा था। ब्लड डोनेट करते ही मेरी मासी की तबीयत एकदम ठीक हो गई, बहुत अच्छी हो गई और मुझे ऐसा लगा कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। लेकिन और जहाँ हॉस्पिटल में मैंने जो हॉस्पिटल की हालत देखी, वहाँ गरीब लोग, मरीज लोग कहीं इधर से उधर भटक रहे थे, ब्लड के लिए परेशान हो रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि अपने को भी कोई ऐसा अच्छा काम करना चाहिए जिससे उदयपुर में कभी ब्लड की कमी ना हो। ये सोच के मैंने उस दिन से, जब मैं 18 साल के था तब से मैं ब्लड डोनेट किया और आज तक लगातार करता आ रहा हूँ।
0: तो इतने वर्षों से आपकी जो ये ब्लड डोनेशन की जर्नी रही है, जो यात्रा रही है, उसमें ऐसे कोई अनुभव आपको हुए हैं जो आपको बहुत ज्यादा याद रहे हो, या ऐसा लगा हो कि हाँ, मेरा जो ब्लड दिया है वो सही जगह यूज हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं अपनी लाइफ में सर?
1: हाँ जी, मेरा सबसे बड़ा ये रहा था, मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था रात को 2 बजे। उसका मेरे पास अर्जेंट कॉल आया एमबी हॉस्पिटल में, मैं रात को 2 बजे उसके हम ब्लड देने गया और मैंने उसको ब्लड डोनेट किया और उसको ब्लड चढ़ाया गया। उसका खून काफी निकल चुका था शरीर से। मेरे ब्लड देने के बाद उसको काफी ठीक महसूस हुआ और उसको अच्छा लगा और वो स्वस्थ हो गया। वो अगले दिन उसको मेरे ब्लड से जो ठीक हुआ उससे मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ, मुझे लगा कि नहीं, हमें किसी के काम आए। अगर ऐसे किसी के काम सब लोग आते रहे और किसी की जान बचाते रहे तो ये एक मानव सेवा, बहुत बड़ी सेवा है। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, ये हमेशा अपन को ब्लड डोनेट करना चाहिए और अपन अब लगातार लोगों की सेवा, मानवता की सेवा के लिए अपन ब्लड डोनेट करते रहेंगे। तब से मैं लगातार करते ही आ रहा हूँ ब्लड डोनेट।
0: क्योंकि अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां हमारे समाज में है कि ब्लड डोनेशन से कुछ ऐसा हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, तो इन भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है, जैसा कि बहुत सारी हैं। तो आपको क्या लगता है, किस किस तरीके की भ्रांतियां होती है और क्या सच में उसके कुछ इफेक्ट होते हैं या सिर्फ भ्रांतियां ही हैं?
1: हाँ जी, काफी लोगों को ये भ्रांतियां हैं लेकिन ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि मुझे कमजोरी आ जाएगी, थकावट हो जाएगी, कई

0: को दूर करने की जरूरत है, जैसा कि बहुत सारी है, तो आपको क्या लगता है किस किस तरीके की भ्रांतियां होती है और क्या सच में उसके कुछ इफेक्ट होते हैं या सिर्फ भ्रांतियां ही हैं?
1: हाँ जी, काफी लोगों को ये भ्रांतियां हैं, लेकिन ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होता, सिर्फ भ्रांतियां हैं। जैसे कई लोगों को लगता है कि मुझे कमजोरी आ जाएगी, थकावट हो जाएगी, कई लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से चक्कर आ जाते हैं, कईयों को लगता है कि शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा, कईयों को लगता है कि मैं दुर्लभ हो जाऊंगा, कई सुई चबने से भी डरते हैं, कई घबराहट से डर जाते हैं, और किसी को, कई लेडीज को कभी ऐसा लगता है कि ब्लड डोनेट करने से मैं शायद माँ नहीं बन पाऊंगी। इस प्रकार की कई कई भ्रांतियां हैं जिसको मैंने काफी दूर करने की कोशिश की है। मैंने इस पे एक बुक भी लिखी है, रक्तदान महादान, जिसमें मैंने लोगों को हमेशा जागरूक किया है कि आप ब्लड डोनेट करें, जो आप काफी उससे स्वस्थ रहेंगे, और ये जो जिस प्रकार की ये भ्रांतियां दूर करने का मैंने प्रयास किया, काफी लोगों को उस पता चलने के बाद वो काफी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और काफी भ्रांतियां दूर हुई हैं।
0: आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं तो कभी आपके स्वास्थ्य पर या दैनिक जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?
1: लगातार ब्लड डोनेट करते रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। जितना आप ब्लड डोनेट करते हैं उतना आप स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आपका पुराना खून निकल जाता है और नया खून बनता है, जिससे आप में नई ऊर्जा आती है। जितनी ये ब्लड की वजह से कई प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे आपके ये हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये जो बीमारियां होती है ना, ये ब्लड की वजह से। जितना आपका अगर ब्लड पुराना निकल जाएगा और नया खून बनेगा ना, तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर होगी और आपको बहुत अच्छा और स्वस्थ लगेगा। तो जितना आप ब्लड डोनेट करके खुद स्वस्थ रहेंगे, और एक बार ब्लड डोनेट करने से 4 लोगों की जान बचती है, तो आप कितना और भलाई और अच्छा इंसानियत का काम करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं और इसी सोच के मैं हमेशा ब्लड डोनेट करता रहता हूँ, और आपके आशीर्वाद से मेरी अभी 59 एज है और मेरे पर कोई किसी प्रकार की कोई बीमारियां नहीं है।
0: अगर हमारे जो लिसनर्स हैं जो आपकी बात आज सुन पा रहे हैं, अगर उनको हम ब्लड डोनेट के लिए प्रेरित करें और तो उनको किन चीजों का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो ब्लड डोनेट करने के बाद में क्या करना है या ब्लड डोनेशन से पहले क्या करना है, इसके बारे में आप कुछ राय देना चाहें?
1: देखिए सर, ब्लड डोनेट करने के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा सोचना नहीं चाहिए, अपना खुला दिमाग रख के आराम से आए ब्लड डोनेट करें, कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको खाली थोड़ा सा ये डर रहता है कि मुझे सुई चुभेगी, दर्द होगा, आजकल वो भी इम्पोर्टेड सुई आ गई है, किसी प्रकार का आपको उसमें कोई दर्द नहीं होता। हाँ, मैं आप युवाओं को एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाएं, कृपया खाली पेट ना करें, आप अच्छे नाश्ता करके जाएं या अच्छा खाना लेके जाएं, क्योंकि ब्लड डोनेट करते समय आपका पेट भरा होना चाहिए, पानी आपने खूब पिया हुआ होना चाहिए, क्योंकि खाली पेट कई बार ब्लड डोनेट करने से घबराहट हो जाती है, तो वहां फिर एकदम माहौल बिगड़ जाए, उनको लगता है कि क्या हो गया एकदम कई लोगों को। तो ये अगर आपका पेट भरा हुआ होना चाहिए, खाली पेट नहीं करें और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लड डोनेट करने के 10 मिनट बाद आप वापस उठ के आराम से आप कोल्ड कॉफी पिए, गर्म कॉफी पिए, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ भी ले लें, और उसके बाद आप 10 मिनट रेस्ट करके और फिर आप अपनी दिनचर्या पे निकल जाए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ भी दिक्कत नहीं आती। हमने तो इतनी बार ब्लड दिया, कोई दिक्कत नहीं आती इससे।
0: एक आखिरी सवाल है कि विश्व रक्तदाता दिवस है आज, इस अवसर पर जो हमारे श्रोता हैं इनको आप किस तरह से कोई संदेश देना चाहते हैं या कोई अपनी बात अपील कुछ करना चाहते हैं तो वो आप क्या कहना चाहेंगे सर?
1: देखो, मैं युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि युवाओं का जो ब्लड होता है बहुत फ्रेश और अच्छा ब्लड होता है, तो जिसको भी चढ़ेगा उस पर उसका एकदम अच्छा असर होगा। क्योंकि आप जितना ब्लड डोनेट करते हैं, पहले तो आप खुद स्वस्थ रहते हैं, फिर लोगों का भला होता है। तो आप कोई भलाई का काम करें, इस उम्र से अगर आप अपने भलाई का काम चालू कर देंगे, तो आप कितना बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। आप जितनी बार ब्लड डोनेट करते हैं उतनी बार आपका जो बीमारियां हैं सब दूर होती हैं। मैं तो युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आजकल जो ये युवा पीढ़ी जो ब्लड अपने बर्थडे पे या किसी दूसरे पे जाके होटलों में खर्चा करते हैं, पैसा बहाते हैं, उसकी जगह आप ब्लड डोनेशन का कैंप लगाएं, खुद ब्लड डोनेट करें और ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि युवाओं का ब्लड जो होता है वो बहुत अच्छा और बढ़िया माना जाता है। तो जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे, मेरी राय ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें, खुद

0: स्वस्थ रहें और चार लोगों की जान बचाएं, यही मेरी आशा और यही मेरी उम्मीद है, मैं यही अपील करना चाहता हूँ।
1: जी आकाशवाणी उदयपुर से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद सर।
0: ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।
2: विश्व रक्तदाता दिवस पर अभी आप सुन रहे थे रविंद्र पाल सिंह कप्पू से बातचीत। इनसे बातचीत कर रहे थे अमित श्रीमाली। और यूं ही श्रोताओं बने रहिए हमारे साथ।
3: और विद्या, इसी के साथ में कुछ संदेश हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला संदेश हमें मिला है कमल जी धारावती और विष्णु जी की तरफ से विनायक कॉम्प्लेक्स से, और ये कह रहे हैं कि आपके कार्यक्रम का प्रवाह बहुत ही अच्छा है, साथ ही आप जो जानकारियां नमस्कार उदयपुर में हमारे साथ साझा करते हैं वो भी बहुत खूबसूरत है।
2: और
3: बहुत
2: एक धन्यवाद अमित, मेरे पास भी आया है हितेश जी सुनील जी का, इनको मेवाड़ के घाटों पर जो हमने जानकारी दी वो बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद आपका।

0: तो अमित, एक और मैसेज आ गया है हमारे पास विक्रम शर्मा का। ये लिखते हैं, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था आज का, धन्यवाद विक्रम जी।
1: और इसी के साथ में एक मैसेज और मिला है अंकिता जी का चित्तौड़ से। वो कहती हैं कि अमित जी और विद्या जी, आप दोनों को नमस्कार, और साथ ही आपका यह जो प्रोग्राम है हम कोशिश करते हैं रोज़ाना सुने, और आज का प्रोग्राम क्योंकि रविवार है तो हम थोड़ा फुर्सत में बैठकर चाय के चुस्कियों के साथ सुन रहे हैं, और आपने जो जानकारी दी, खासतौर पर आपने मेवाड़ की घाट में जो चित्तौड़ की जानकारी दी, वो बहुत ही शानदार लगी। बहुत धन्यवाद अंकिता जी आपको मैसेज करने के लिए।
0: और अमित, अब देख रहे हैं घड़ी हमें इजाज़त नहीं दे रही है, वक्त हो चुका है प्रोग्राम से विदा लेने का। आज के इस प्रोग्राम में मैं थी आपकी दोस्त विद्या, मेरे साथ
1: अमित।
0: तो दीजिए इस गीत के साथ ही इजाज़त। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर
1: 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

0: Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest work.
1: FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है और अभी 9:30 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं गुड मॉर्निंग लेक सिटी।

गुड मॉर्निंग लेक सिटी। सूरज की सुनहरी किरणों के साथ आपके इस खूबसूरत रविवार की शुरुआत हो चुकी है और इसी शानदार सुबह में आपका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग लेक सिटी में। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और अगले कुछ समय तक रहेगा शानदार संगीत, पॉजिटिव बातें और रविवार वाली सुकून भरी ऊर्जा का साथ। तो चाहे आप चाय की चुस्कियों के साथ आनंद ले रहे हैं या फिर आप अभी वॉक कर रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या घर के कुछ काम निपटा रहे हैं, छुट्टी को एंजॉय करने की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के साथ अपनी सुबह को और भी खास बनाएं और आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

हालांकि श्रोताओं, सुबह तो कब की हो चुकी है, लेकिन चूंकि आज रविवार है और रविवार का दिन छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा आराम करने का दिन है, लेकिन ज़्यादा आराम भी थोड़ा सा ख़राब होता है, तो अब हमें जाग जाना चाहिए और इसीलिए ये नगमा हम आपके लिए लेकर आए थे। और रविवार का दिन सुबह, जो हमारी पूरे सप्ताह की भाग दौड़ रहती है, सुबह उठो

गर्लफ्रेंड बनाओ, ऑफिस जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, उस सब से एक आराम करने का, थोड़ा रिलैक्स करने का दिन है। आज कोशिश करते हैं हम कि हम अपने लिए समय निकालें, थोड़ा सा मुस्कुराएं, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें जो कि आए दिन अक्सर जो हमारे बीतते हुए दिन हैं उसमें छूट जाती है। बस इसी पॉजिटिव सोच के साथ ये अगला नगमा।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अभी आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लेक सिटी और इस सुहानी सुबह में हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी। कहते हैं कि रविवार की सुबह जितनी सुकून भरी होती है उतना ही खूबसूरत पूरा दिन बन जाता है। तो आज जल्दबाजी को थोड़ा सा विराम दीजिए, परिवार के साथ बैठिए, पसंदीदा नाश्ते का आनंद लीजिए और ज़िंदगी की रफ्तार को थोड़ा सा धीमा कीजिए। और इसी के साथ में एक चैलेंज भी है। वो चैलेंज ये है कि आज क्योंकि रविवार है, थोड़ा सुकून में हम बैठेंगे, तो अपने किसी परिचित को थैंक यू कहिए, क्योंकि वो अपने समय में से आपके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं बिना कुछ डिमांड किए।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंकर।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: दोस्तों, हर नया दिन हमें एक नया अवसर देता है। बीते सप्ताह में जो कुछ अधूरा रह गया था, आज थोड़ा सा आराम करने के बाद अगले सप्ताह में उसे अचीव किया जा सकता है। सकारात्मक सोच छोटी शुरुआत को भी बड़ी सफलता में बदल देती है। इसी के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

पूरे दिन को खुशनुमा बनाएंगे। जाने से पहले बस इतना सा कहना चाहूँगा कि खुशियाँ हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं होती, छोटे छोटे पलों से भी खुशियाँ बनाई जा सकती है। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस यहीं तक। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम टॉप 10।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं एक कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है टॉप 10। यानी कि ये एक धमाकेदार म्यूज़िकल सफ़र होने वाला है। पिछले 7 दिनों में म्यूज़िक लवर्स की पहली पसंद बने कुछ गानों को मिलाकर हमने ये लिस्ट तैयार की है, इस हफ्ते के सबसे चर्चित बॉलीवुड नगमों की सूची। आने वाले एक घंटे के इस सफ़र में हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे बल्कि जानेंगे उन फिल्मों की कहानियाँ, कलाकारों की मेहनत, संगीतकारों की सोच और उनसे जुड़े किस्से, साथ ही वो गीत जो लाखों दिलों की धड़कन बन गए। तो अपने रेडियो सेट की आवाज़ को थोड़ा बढ़ा लीजिए और आइए शुरू करते हैं हम टॉप 10।

कितनी सादगी और कितनी गहराई है इस गीत में। शायद यही वजह है कि जाइए सजना अपने रिलीज से आज तक लोगों की प्लेलिस्ट में मजबूती से बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब समय है आगे बढ़ने का। प्यार की कहानी से निकलकर अब हम पहुंचेंगे एक ऐसे गीत की तरफ जो रिश्तों की छोटी छोटी बातों में छिपी बड़ी खूबसूरती का जश्न मनाता है। ये गीत है फिल्म चांद मेरा दिल से। फिल्म का निर्देशन किया है विवेक सोनी और इसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं अनन्या पांडे और लक्ष्य। ये फिल्म युवा प्रेम, सपनों और रिश्तों की उन भावनाओं को दिखाती है जिनसे लगभग हर युवा कभी न कभी गुजरता है। इस गाने का संगीत किया है मशहूर जोड़ी सचिन जिगर ने, गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, जबकि इसे अपनी मधुर आवाज से सजाया है राघव चौतन्य और जोनिता गांधी ने। संगीत की सादगी बोलों की मिठास या अनन्या और लक्ष्य की ताज़ा केमिस्ट्री ने इस गीत को युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया है।

कभी कभी प्यार का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है कि हमें किसी की या कोई वजह की ज़रूरत नहीं होती, बस उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। तो चलिए अब आपको अगले गीत की तरफ लिए चलते हैं, एक ऐसा गीत जिसने अपनी गहराई से, अपनी आवाज़ से और अपने एहसासों से लाखों दिलों को छू लिया है। ये गीत है फिल्म धुरंधर से, जिसका निर्देशन किया है आदित्य धर ने। मुख्य भूमिकाओं में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े किरदार हमें बड़े अभिनेता हमें दिखाई देते हैं। साथ ही फिल्म एक बड़े कैनवास पर बनी है, स्पाई थ्रिलर मूवी है, लेकिन इस गीत में दर्शकों को उसके बीच छिपी बेहद भावुक प्रेम कहानी की झलक भी देखने को मिलती है। गीत को अपनी जादुई आवाज़ दी है अरिजीत सिंह और अरमान खान ने। संगीतकार हैं शाश्वत सचदेव, जबकि शब्दों को खूबसूरती से पिराया है इरशाद कामिल ने।

सच है कि कुछ नगमे कुछ गाने सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है, और गहरा हुआ उन्हीं गीतों में से एक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त है थोड़ा सा रंग बदलने का, थोड़ा सा समा बदलने का। अब तक हमने प्यार की नरमी महसूस की है, लेकिन अब जो गाना आने वाला है वो एक ऐसा गीत है जिसमें दीवानगी है, जुनून है और A.R. रहमान के संगीत का जादू। ये गीत है फिल्म तेरे इश्क में का। निर्देशक है आनंद एल राय और ये फिल्म प्रेम, विरह और उनके भावनात्मक संघर्ष की कहानी कहती है। मुख्य भूमिकाओं में है धनुष और कृति सैनन। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म प्रेम की उस अवस्था को दिखाती है जहां इंसान प्यार में खुद को पूरी तरह खो देता है। और जब प्यार की गहराई की बात हो तो संगीत की कमान संभाली है ऑस्कर विजेता A.R. रहमान ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, जिनके शब्द हमेशा ही हमारे दिलों पर राज करते आते हैं। इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह प्रेम को सजाता नहीं बल्कि उसकी बेचैनी और उसकी तड़प को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रखता है। कुछ गाने सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है, और गहरा हुआ उन्हीं गीतों में से एक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त है थोड़ा सा रंग बदलने का, थोड़ा सा समा बदलने का। अब तक हमने प्यार की नरमी महसूस की है, लेकिन अब जो गाना आने वाला है वो एक ऐसा गीत है जिसमें दीवानगी है, जुनून है और A.R. रहमान के संगीत का जादू। ये गीत है फिल्म तेरे इश्क में का। निर्देशक है आनंद एल राय और ये फिल्म प्रेम, विरह और उनके भावनात्मक संघर्ष की कहानी कहती है। मुख्य भूमिकाओं में है धनुष और कृति सैनन। दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म प्रेम की उस अवस्था को दिखाती है जहां इंसान प्यार में खुद को पूरी तरह खो देता है। और जब प्यार की गहराई की बात हो तो संगीत की कमान संभाली है ऑस्कर विजेता A.R. रहमान ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, जिनके शब्द हमेशा ही हमारे दिलों पर राज करते आते हैं। इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यह प्रेम को सजाता नहीं बल्कि उसकी बेचैनी और उसकी तड़प को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रखता है।

0: 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
1: आरबीआई कहता है,
2: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: कुछ ऐसे गीत होते हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि ये गीत हमारे दिल की बात लिख दी हो, और कुछ नगमे जो, और यही वो नगमा था जिसे सुनकर बिल्कुल ऐसा ही हमें लगता है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है रोमांस से निकलकर हम बढ़ते हैं जोश और जुनून की तरफ। फिल्म धुरंधर द रिवेंज का पहला नगमा हम एक सुन चुके हैं जो टॉप लिस्ट में बना हुआ है, और ऐसा ही एक और नगमा है जो भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। इस गाने को संगीतबद्ध किया है शाश्वत सचदेव ने। गीत में पंजाबी लोक संगीत की ऊर्जा और आधुनिक बीट्स का शानदार मिश्रण हमें दिखाई देता है। इस गीत की सबसे बड़ी खासियत है इसका हाई एनर्जी बीट पैटर्न। जैसे ही ढोल की थाप शुरू होती है, अपने पैर अपने आप थरकने लगेंगे। तो कुर्सी पर बैठे हैं तो थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि अब माहौल में आने वाला है देसी स्वैग।

0: तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: खो गया इंतजाम।
5: किसका?
4: गुड्डी की फीस का।
5: दिखा,

क्या ज़बरदस्त एनर्जी है इस गीत में, और ऐसे गाने हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि संगीत सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि एनर्जी का भी नाम है। और अभी आप सुन रहे हैं सप्ताह का टॉप 10, और अब हम लेकर आए हैं एक ऐसा गीत जो सपनों को, उम्मीदों को, हौसलों की चमक को अपने सुरों में समेटे हुआ है। फिल्म का नाम है 21, और इस गीत में, इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं अगस्त्य नंदा। निर्देशन की कमान संभाली है श्रीराम राघवन ने, गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने, वहीं इसका संगीत तैयार किया है सचिन जिगर ने, और इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म 21 का ये नगमा।

सचमुच कुछ गीत हमारे भीतर सोए हुए विश्वास को जगाने का काम करते हैं, और सितारे एक ऐसा ही गीत है जो हमें याद दिलाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो आसमान की तरफ देखना नहीं छोड़ते। तो चलिए अब चलते हैं टॉप 10 की इस सीरीज़ के अगले गाने की तरफ, जो कि हर पार्टी, हर शादी और हर डांस फ्लोर को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक ऐसा नगमा जो कि चंदेरी के रहस्यमय माहौल से हॉरर कॉमेडी के अनोखे मिश्रण को सामने लाती है। राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना की शानदार टीम इस फिल्म की जान है। फिल्म का निर्देशक किया है अमर कौशिक ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है पवन सिंह और दिव्या कुमार ने, जबकि गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य। ये गाना रिलीज़ होने के कुछ ही दिनों बाद से सोशल मीडिया पर और बाकी सभी जगहों पर इतना ज़्यादा बज रहा है और ट्रेंड हो रहा है कि संगीत प्रेमियों में इसकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई है।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तो अभी जो नगमा आपने सुना, ये नगमा सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा और मनोरंजन का ऐसा तड़का है जिसमें सिनेमा घरों को लेकर सोशल मीडिया तक बहुत धूम मचाई थी। अब वक्त है प्यार की मासूमियत को सुरों में पिरोने की। स्काई फोर्स नाम की फिल्म देशभक्ति, साहस और रिश्तों की भावनात्मक कहानी को सामने लाती है और उसी फिल्म से हम अगला नगमा लेकर आए हैं। फिल्म के अंदर अक्षय कुमार, वीर पहाड़िया, निर्मित कौर और सारा अली खान मुख्य भूमिकाओं में नज़र आते हैं। फिल्म का निर्देशन किया है संदीप केवलानी ने और अभिषेक अनिल कपूर ने। इस गीत को संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और इस गीत को अपनी आवाज़ से सजाया है अरिजीत सिंह और अफसाना खान ने, जबकि इसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। गाने की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी और यही वजह है कि ये गीत लगातार रोमांटिक प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अभी आप सुन रहे हैं टॉप 10। अब इस टॉप 10 की सीरीज में एक आखिरी नगमा बाकी है और ये वो गीत है जिसने लाखों दिलों को छुआ है। ये वो गीत है जो कई सप्ताह से ऊंची छलांग लगाए बैठा है। तो तैयार हो जाइए सैयारा फिल्म के इस गीत के लिए। ये फिल्म बेहद ही खूबसूरत, इनोसेंट और म्यूजिकल लव स्टोरी है। स्टार कास्ट की अगर बात करें तो इस फिल्म में आहान पांडे और अनीत पड्डा एक

बिल्कुल ही नई और फ्रेश जोड़ी को लॉन्च किया गया है। आज के दौर में जहां अक्सर डार्क और एक्शन फिल्में बनती हैं, वहीं डायरेक्टर ने एक पुरानी यादों जैसी मेलोडियस और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी बनाने का रिस्क लिया है, जो पूरी तरह से सफल रहा है। इस गाने को कंपोज किया है आज के दौर के सबसे टैलेंटेड म्यूजिशियन विशाल मिश्रा ने और खुद इसे गाया भी है। उनका साथ दिया है हंसिका पारिक ने। राजशेखर के लिखे हुए बोल इतने सीधे और गहरे हैं कि ये गाना आशिकों की पहली पसंद बन गया है। बॉक्स ऑफिस पर न्यू कमर्स की फिल्म होने के बावजूद इसने अपनी लागत से कहीं ज़्यादा कमाई की है और इस सक्सेस रेशो को स्लीपर हिट का दर्जा दिया जा रहा है। तो चलिए आखिर में सुनते हैं इस सफ़र के ये आखिरी नगमा।

संगीत की दुनिया हर सप्ताह बदलती रहती है, नए गीत आते हैं, कुछ नए सितारे चमकते हैं और नई धुनें हमारे दिलों में जगह बनाती है। लेकिन संगीत का असली जादू यही है कि वो हमें जोड़े रखता है, हमारी भावनाओं को आवाज़ देता है और हमारी यादों का हिस्सा बन जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये टॉप 10 पसंद आया होगा। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित, और अब इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में हम फिर से मिलेंगे नई फिल्मों के साथ।

नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका आकाशवाणी उदयपुर के FM चैनल पर और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमित। आइए अब शुरू करते हैं कुछ ऐसे नगमे जो कई अरसे से हमारे दिल पर छाए हुए हैं। कार्यक्रम का नाम है पुरानी फिल्मों से और उसका पहला नगमा हम लेकर आए हैं इज्जत फिल्म से।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से, और अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म शर्मिली से। संगीत किया है SD बर्मन ने और इसको अपनी आवाज़ से सजाया है लता मंगेशकर ने।

अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म आँखें से। इसको कंपोज किया है रवि ने और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: अगला नगमा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिल्म जब जब फूल खिले से। कल्याण जी आनंद जी का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा हुआ ये नगमा।

अभी जो नगमा आप सुन रहे थे वो था किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आराधना से, और संगीत किया था एस डी बर्मन ने। अगला नगमा हम लेकर आए हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ में, और इसका संगीत किया है आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम है द ट्रेन। और इसी नगमे के साथ अपने रेडियो दोस्त अमित को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

FM बैंड 101.9 MHz पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र FM रेडियो लेक सिटी 11:30 होने आए हैं। आइए अब सुनेंगे कार्यक्रम गोखड़ा राजस्थानी गीतों का।

फासला वेवे नहीं है सा, फासला बनाया जावे है सा, मीला दूर न रही ने भी रिश्ता निभाया जावे है सा, दिखाऊं जिंदगी नी चाले है सा, क्योंकि कुछ रिश्ता जो वेवे है वो भरोसाऊं निभाया जावे सा। तो देखो आप रो जो भरोसो है एफएम रेडियो लेक सिटी पे, तो माँ भी आई गया हाँ आप रे वास्ते कार्यक्रम लेन गोखड़ा, राजस्थान रे मिट्टी री महक रो कार्यक्रम गोखड़ा, जटे आप सुनोगा राजस्थानी गीत। तो अभिवादन स्वीकार करो आपरी परवीन भाई सारो, गणी गणी खम्मा सा।

तो श्रोता, आप सुन रहे हो कार्यक्रम गोखड़ा, और कार्यक्रम गोखड़ा में आप उमा बाता भी करा हाँ नरिहारी, और राजस्थान रे मिट्टी रे महक यानी राजस्थान रे गीत आप सुन रहे हो। राजस्थान रे संस्कृति अपनी जीवन तथा ऐतिहासिक विरासत, रंग बिरंगा परिधान और अतिथि देवो भव की परंपरा वास्ते दुनिया भर में प्रसिद्ध है। और अटारा खान पान री तो कई बात करा सा, आटा का सबों प्रसिद्ध जो व्यंजन है दाल बाटी चूरमा, इनके अलावा लाल गट्टा री सब्जी, प्याज री कचौरी, गणी हारी ऐसी चीज़ें हैं जो राजस्थान ने वर्ल्ड फेमस कर रखी है सा। और अगलो गीत जो आपने हुण वही रहा वो है काल जे में घर कर गई।

देखो सब बोली तो आपाने असीस मीठी राखनी चावे है जो कणी के विकार जामे घर कर जावे सा, क्योंकि मीठी मीठी बोली हर कीने भावे है सा और कड़ वो बोल तो कीने भी पसंद नी आवे है सा। तो अशो नी करनो है आपाने, हमेशा अच्छो बोलनो है। केसरिया बनना रे मारा हरियाला बना, थारी राजपूती शान मने लागे है प्यारी, झिलमिल तारा बीच चांद सो चमके है न्यारो।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
7: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
6: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
7: तो फिर सही नंबर,
6: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
7: आपने तो बचा लिया दीदी।
6: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
8: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
9: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
10: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
9: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: राजस्थानी गीता रो कार्यक्रम गोखड़ा आप हुन रहा हो, और कार्यक्रम गोखड़ा में नरी हारी ऐसी गीत आप तक मां पहुंचावा, जड़ी में कुछ न कुछ ऐसी बातें विविध जो आप हुनो और आपने गणो मजो आवे, आनंद आवे है सा। और अगलो जो गीत है वो भी कई अणी कंडीशन मायने बणियो तको है कि आप देखोगा कि एक बींदनी अपने बींदो शिकायत कर रही कि था तो जई ने बैठ गया हो परदेश। तो हुनो सा किस तरह यो गीत गायो है सा।

तो आप देख रहे हो सर कि किसान शिकायत दे रही है कि जा बैठा हो परदेश। तो अशा बहुत सारा राजस्थानी गीत है जड़ा में, अशी घनी हरी बाता है जो मजो भी आवे सुनने, और घनी ऐसी चीज़ा है जो आपने माँ शेयर भी करा। अब जो अगलो राजस्थानी गीत है हंस हंस बोलूँ, तो यो गीत में भी कुछ अशी ही बाता है, शिकायत भी वे रही है। तो राजस्थान के माटी की खुशबू दी जटे माँ बात कर रहा, कार्यक्रम घोखड़ा आप तक माँ पहुँच रहा। तो अब यो आपने कार्यक्रम रो आखिरी राजस्थानी गीत है जो आपने रेडियो सेट में माँ पहुँच ही रहा, और अड़ी गीत रे लारे ही आपरी परवीन भाईसा ने चाल वारी अनुमति दोसा, फिर मिलवारे वादा रे लारे। तो गणी गणी खमासा, हंसता रहो, मुस्कुराता रहो, सुनता रहो आकाशवाणी उदयपुर रा प्रोग्राम, FM रेडियो लेक सिटी रा प्रोग्राम। तो चाला सा आप हुनो यो गीत।

0: अरे मैं आपके थाने ले जाऊं यार, तू फालतू जिकाल मत कर, मारे और भी काम है।
1: मने नी ले जाओ कारण बता दो, कहीं टिकट नहीं मिले के कोई और कारण है? ते तो क्या होता, टिकट बुक करा।

0: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोखड़ा FM बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आकाशवाणी उदयपुर। दोपहर के 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं दिल्ली से समाचार हिंदी में, और उसके बाद सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। उन्हें रोजगार, श्रम, गरीबी और विकास से जुड़े विषयों पर 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में रांची के 2 और गढ़वा जिले के 2 लोग हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। कनाडा के वैंकूवर में फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से

करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: राहुल देव बर्मन की बनाई तर्ज पर इसे गाया किशोर कुमार ने। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे मेरे जीवन साथी, इस फिल्म का गीत आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

0: कमर जलाल आबादी के बोल थे आशा भोसले मोहम्मद रफी के युगल सुरों में। फागुन फिल्म का गीत आपने सुना।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आपको गीत सुनवाते हैं। फिल्म है गेटवे ऑफ इंडिया।

0: सोहनी महिवाल फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने। और इस गीत के पहले श्रोताओ, आपने मदन मोहन का सर्वद्ध किया गीत सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, दो आवाजें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म थी गेटवे ऑफ इंडिया।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद

0: के सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यहीं पर है।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अजनबी फिल्म का गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज थी, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसिकार राहुल देव बर्मन। मेरे हमदम मेरे दोस्त मोहम्मद रफी की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

शेवन रिजवी के बोलों को सुरों में ढाला ओपी नैयर ने, महेंद्र कपूर आशा भोसले के युगल सुरों में ये गीत आपने सुना। फिल्म थी दिल और मोहब्बत।

0: मेरे हुजूर, फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डे की आवाज़ में। हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर, जय किशन की तर्ज थी। यही थी आज के कार्यक्रम यादों का सफर की आखिरी पेशकश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: आप चलें, थोड़ा हम चलें और इसी तरह से सुरीला सफ़र कार्यक्रम की मंजिल को तय कर लें। गीत संगीत के इस दिलचस्प सफ़र में होते हैं आप, हम और विविध भारती साथ साथ। श्रोताओं, आज बहुत से श्रोताओं ने हमारे गीतों को भी पहचाना है, शब्दों को भी पहचाना है जो हमारे टेक्स्ट या इबारत में लिखे हुए हैं। हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए लॉग ऑन कीजिए www.facebook.com/vbsmumbai और भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज की इबारत अब एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। वैसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इसे पढ़ भी लिया है, हमारे रेडियो श्रोता भी इस इबारत को सुने और अंदाजा लगाएं कि आज कौन से गीत हो सकते हैं। आज रास्ता पूछा जो आईने से, आईना यूं ही बात करने लगा, मासूम सा चेहरा जरा बता उस जुल्फ की मानी, वो जो रंग महल में छुप गया कहीं, बता मेरा हमसफर कौन है बता, एक चेहरा आईने में उभरने लगा, वही कजरा वही गजरा वही प्यार में दिलदार का इंतजार, कभी मोहब्बत कभी लड़ाई, आज ये दर्पण देखती रहो तेरा हुस्न रहे आबाद, हाँ एक उम्र के बाद खुद से खुद को प्यार हुआ तो आईने में मेरा ही चेहरा बन तैयार हुआ, होता है दो चेहरा हर चेहरे पे तेरा हमसफर तेरा दिल ही है, ये देख मैं मुस्काई तो दर्पण ने कहा चले जाना जरा ठहरो, दिन कुछ ऐसे गुजरता है जैसे एहसास उतरता है कोई, आईना देख के तसल्ली हुई हमको इस घर में जानता है कोई। तो अब आपको अंदाजा लगाना है श्रोताओं कि कौन से गीत हो सकते हैं और क्या शब्द हैं जिन्हें आपको चुनना है। ये कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं, आपको अदाकार और अदाकारा बतानी है।
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: यूं ही तुम

सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ों में। इंदिवर के बोल थे राजेश खन्ना और मुमताज़ पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत केवल एक संवाद नहीं बल्कि स्वयं से स्वयं की मुलाकात की एक मुकम्मल दास्तान है। इन पंक्तियों में आईना महज कांच का एक टुकड़ा नहीं बल्कि वो एक गहरे दोस्त, एक मार्गदर्शक और सच्चे हमसफर के रूप में उभरता है। जब दुनिया की भाग दौड़ में इंसान खुद को भूल जाता है तब आईना उसे ठहराना सिखाता है। पंक्तियों का अंत जिस सुकून के साथ होता है वो अद्भुत है। चले जाना जरा ठहरो, आईने का ये कहना दिखाता है कि खुद के साथ बिताया गया वक्त कितना कीमती होता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के इस दौर में जहां हर कोई अनजाना है वहां आईने में खुद को देखकर ये इत्मीनान होना कि कोई तो है जो मुझे गहराई से समझता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज के शब्दों से लगता है कि कार्यक्रम में कुछ दिलचस्प पहेलियां भी होंगी, तो मैं उत्सुक हूं कि सुरीला सफर में कौन कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। जी हाँ, तो आप सुनिए कार्यक्रम को, बिल्कुल पता चलेगा। और आप भी बताएं हमें कौन कौन से गीत आज शामिल हो सकते हैं। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठ ना मनाना और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ, अंततः आईना एक ये एहसास कराता है कि सच्चा हमसफर कोई और नहीं बल्कि स्वयं दिल का दिल और अपनी पहचान है। उम्र के एक पड़ाव पर व्यक्ति जब स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है तब उसे अपने भीतर ही संपूर्णता दिखाई देने लगती है। अब दर्पण केवल चेहरा ही नहीं दिखाता बल्कि मन के भावों और जीवन के अनुभवों का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। तो देखते हैं आज कौन कौन से गीत हैं श्रोताओं। वैसे आईना तो आप भी देखते हैं, खरीदते भी हैं, क्या आपने कभी इसकी डिज़ाइन पर ध्यान दिया है या आपको जब आप इसे ख़रीदते हैं तो इसकी डिज़ाइन पर कितना ध्यान देते हैं, कितना आप सोचते हैं कि ये डिज़ाइन किस तरह से उसे और सुंदर बनाता है। तो आप हमें आईने की डिज़ाइन के बारे में और अपनी पसंद के बारे में ज़रूर लिखें। वैसे भारत में देखा जाए तो बहुत सारे किले ऐसे हैं, बहुत सारे महल ऐसे हैं जहां शीश महल भी हैं। तो ऐसी कोई बात अगर आपको याद आती है, आपने देखा है कहीं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। वैसे शीशे के लॉकेट भी होते हैं और चश्मा भी।

माला सिन्हा और शम्मी कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, और इस गीत की डिटेल आपको लिखनी है श्रोताओं कि गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में स्थित शीश महल में देखे हैं, गाइड ने मशाल जलाकर चारों ओर दहकती आग देख दंग रह गए थे। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे शीशे पहले महलों में लगाए जाते थे और बड़े बड़े जो कमरे होते थे उसमें लगाए जाते थे, वो इस वजह से कि जब एक छोटी सी मशाल भी जलाई जाए या मोमबत्ती भी रोशन की जाए तो उससे सारा महल रात में जगमगा उठे, तो इस वजह से शीशे लगाए जाते थे। वैसे शीशों पर बड़ी कारीगरी भी की जाती थी, आपने ताजमहल में भी देखा होगा। वैसे बहुत सारे तो अब हैं नहीं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना एक ऐसी वस्तु है जिसमें पारा लगने के बाद अपना चेहरा दिखता है और पारा हटने के बाद पूरी दुनिया की हकीकत का असली चेहरा हमारे सामने रख देता है। जी हाँ, अगर पारा न चढ़ाया जाए इस पर तो इस पर शक्ल नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि कहिए आईना या फिर दर्पण पारदर्शिता के साथ आत्मनिरीक्षण करने का संदेश देता है, हमारे वास्तविक बाहरी रूप को दिखाते हुए हमें अंदर झांकने को भी बोलता है। इसलिए तो कहा जाता है कि दर्पण झूठ ना बोले, हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही वापस मिलेगा। बाहरी रूप संवारने के साथ साथ मन या दिल के अंदर रहे को विचार को संवार कर दूर करने की भी जरूरत है। जी हाँ श्रोताओं, वैसे एक बात भी है कि आईना जितना दिखाता है उससे ज़्यादा कहीं कुछ छुपा भी लेता है, और तभी तो हमारी इबारत में दिल के बारे में भी लिखा है कि वो दिल है जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं, और इसी

इसका असर हमारे चेहरे पर होता है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब दुनिया के सामने मुस्कुराते मुस्कुराते थककर इंसान अकेले में हार जाता है तो आईना वो दोस्त होता है जो उसके बहते हुए आंसुओं को बिना किसी शिकायत के कबूल करता है। दुनिया की नज़रों में भले ही हम खुद को छुपा लें पर अपनी ही नज़रों से नज़रें मिलाना सिर्फ आईने के सामने मुमकिन है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कांच को भी दर्पण में ढालने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। जिस तरह कांच अपनी मूल पहचान पारदर्शिता को थोड़ा बदलकर दर्पण बनाता है और तभी वह खुद का असली रूप देख पाता है, उसी तरह इंसान को भी समझदार और परिपक्व बनने के लिए अपनी सोच और आदतों में बदलाव लाना पड़ता है। शीशे के परिधानों को लेकर आप कुछ लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: काजल फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, आपको कलाकार बताने हैं इस गीत के, और अगले गीत में भी आपको कलाकार बताने हैं और फिल्म पहचाननी है, गीतकार बताना है। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमारे ग्वालियर में हर साल व्यापार मेला लगता है, उसमें एक हॉल में कई प्रकार के शीशे लगे होते हैं, उनमें किसी में मोटे पतले या फिर अलग अलग तरह के मुंह बनकर सामने आते हैं, तो उसे देखकर बड़ी हंसी आती है। जी हाँ, ये तो है, लेकिन शीशे के परिधान भी होते हैं श्रोता, वो आपको कितने पसंद हैं और कहाँ से आप खरीदते हैं, जहाँ आपने जहाँ भी ख़रीदा होगा, जहाँ से भी ख़रीदा होगा, वो एक ख़ास नगरी होगी, वैसे ग्लास सिटी ऑफ इंडिया यानी कांच नगरी किसे कहते हैं, और क्या आपने यहाँ कभी ख़रीदारी की है। एक और सवाल का जवाब आपको देना है कि एक गीत है जो 60 के दशक की एक मकबूल फिल्म का है, उसमें बहुत सारे शीशे दर्शाए गए हैं, आपको वो फिल्म, वो अभिनेत्री पहचाननी है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाला सुरीला सफ़र कार्यक्रम में कुछ गीत नैनों में दर्पण है, दर्पण के इन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, लेकिन अगर आप टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग गीतों का जिक्र है श्रोता, और ज़रूर दर्पण के भी गीत हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हुस्न उफनती हसरतों उमंगों तरंगों का जिक्र है, जब इश्क की अरमान लिए दिल एक हम सफ़र हमराही और हमराज की चाहत रखता है, जो उसके दिल की भावनाओं को समझे और जीवन सफ़र का हम सफ़र बने। हुस्न और इश्क के ताने बाने में बुनी हुई तड़प दर्शाती खूबसूरत इबारत इश्क की इबारत है। संगीत में सफ़र की प्रेम गंगा में डुबकी लगाने के लिए हम श्रोतागण भी बेकरार हैं। तो जी हाँ, कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है श्रोता। एक और श्रोता ने लिखा है कि दर्पण की बात देखकर हमें तो गीत गाता चल का गीत याद आ गया, जिसमें प्यारी सी सारिका जी गा रही हैं, मैं वही दर्पण वही। और एक और श्रोता लिखते हैं, आईना सिर्फ चेहरा देखने के काम नहीं आता, आईना हमें मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे छुपे दर्द का एहसास भी दिलाता है, आईना हर देखने वाले को सच ही दिखलाता है, देखने वाला आईने में क्या देखना चाहता है, जो रूप भी आईने के सामने आता है आईना भी उस रूप का सच दिखाता है, पर आईने की एक सच्चाई ये भी है दोस्तों, ये कब सच बतलाता है, जब देखो दायां तो बायां ये दिखलाता है।
1: रंग में

जीवन के दिल के अलग अलग परिदृश्य हैं श्रोताओं, जो गीतों में ढलकर हमारे सामने आए हैं, और यही तो आईना दिखाना चाहता है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है फिल्म के बारे में, जो हमने सवाल पूछा था मुगले आजम फिल्म का, वो गीत प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और उसमें बहुत सारे शीशे जो हैं वो बेल्जियम ग्लास इस्तेमाल किए गए हैं। मधुबाला पर फिल्माया गया ये गीत है। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि भारत में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद को कांच नगरी यानी ग्लास सिटी कहा जाता है। इसे चूड़ी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये देश में कांच की चूड़ियों और कांच के अन्य सजावटी सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये शहर आगरा के पास स्थित है। जी हाँ, और भी शीशे को लेकर बहुत सारी जो हैं बातें हैं, और बहुत सारे शहर हैं श्रोताओं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो भारत में प्रसिद्ध हैं और जो व्यापार में भी लाई जाती हैं, यानी जिनका जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो इस बारे में भी अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर लिखें। और शीशे के जो गहने होते हैं वो भी अलग होते हैं। कुछ एक मीनाकारी और कुंदन की तरह का बनाया जाता है जिसमें मीनाकारी होती है। तो ये पारंपरिक जो ज्वेलरी है जो है वो राजस्थान के एक शहर में बनाई जाती है। क्या इस शहर के बारे में आपको पता है, जहां कुंदन और मीनाकारी का काम होता है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिखती हैं कि शीशे की एक सुंदर नाजुक वस्तु यानी आईना दर्पण, जो किसी भी चीज़ का सटीक प्रतिबिंब दिखलाता है, सजना संवरना, खुद को स्मार्ट दिखना रखना, ये काम दर्पण की सहायता से आसान बन जाते हैं। मन का दर्पण सच्चाई का प्रतीक होता है, जो आत्मबोध के साथ नकारात्मकता से बचाता है, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्पण जब घर में रखा जाता है तो बहुत सारी बातों का भी ध्यान रखा जाता है श्रोताओं, जैसा कि हमारी इन श्रोता ने लिखा है। तो क्या आप दर्पण को कहाँ रखना है इस बारे में भी ध्यान देते हैं, तो ज़रूर बताइए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना तो वही रहता है मगर चेहरा हर रोज़ बदल जाता है, कभी थका हुआ, कभी बिखरा हुआ, तो कभी संवरा हुआ। ये सच है कि आईना

0: कभी झूठ नहीं बोलता लेकिन पूरा सच भी नहीं दिखा सकता। आईना चेहरे की झुर्रियां तो दिखा देगा पर चेहरे के पीछे की थकान नहीं, मुस्कान तो दिखा देगा पर उसके पीछे छुपे दर्द को नहीं बता सकता। एक और श्रोता ने लिखा है, वस्तुओं में एक आईना ही है जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करने की ग्रहणशीलता रखता है। पूरी निश्चलता के साथ आईने की जो सबसे बड़ी खूबी है, जहां से जो मिला उसे उसी रूप में लौटा देता है। इसलिए तो कहते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। उम्र दर उम्र और बदलते वक्त के दो ही साक्षी होते हैं, पहला समय और दूसरा आईना। हम इस बात को कभी समझ नहीं पाते मगर सच यही है, आईना अपनी मौजूदगी में हमें खुद से मिलने की आज़ादी देता है। एक केवल उसी के पास साहस होता है तुमको तुमसे रूबरू कराने का। आईना हमारे जीवन रथ का सच्चा सारथी है।
1: कजरा लगा के गजरा सजा के

अपना देश फिल्म का ये गीत था, मुमताज और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में ऐसी नाजुक चीज की बात है जो सभी का हम सफर भी है, और वो चीज जो हमें खुद से रूबरू कराती है, और यह है आईना जो कभी झूठ नहीं बोला करता। आपके प्रतिबिंब जैसा है, आपका प्रतिबिंब जैसा है वैसा ही उभरता है। वक्त के साथ बदलते चेहरे से लेकर हर उन बदलावों का गवाह होता है जो उसमें प्रतिबिंब होते हैं। और कुछ एक गीत भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत कमियां निकालते हैं हम दूसरों में, अक्सर आओ एक मुलाकात जरा आईने से भी कर लेते हैं। एक यही तो है जो जैसा है वैसा ही दिखाता है। सिर्फ आंतरिक भावनाओं को छोड़कर में

जब भी अकेला होता हूँ तो आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप को देखता हूँ तो महसूस करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ, और उसी समय रेडियो पर बजता गीत दिल को बेहद सुकून दे जाता है। आज की इबारत पढ़ने से पता चलता है कि बड़े ही रोमांटिक गीत सुनवाए जाएंगे कार्यक्रम में, और कुछ एक गीत भी इन्होंने बताए हैं जिसमें से कुछ एक गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र आईने के साथ शुरू करना और आईने को लेकर ही पूरा करना है। मैं वही दर्पण, वही अपने आप को जवान दिखाने के लिए लोग बाल काले करते हैं, चेहरे पर मालिश लगा लेते हैं, लेकिन जब वो आईना देखते हैं तो आईना असली सूरत और उम्र दिखाता है। कभी कभी हम इतने उदास होते हैं और आईने को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही कुछ गीत पुष्प सुनकर आज सुरीला सफर कार्यक्रम पूरा करना है।

इस गीत को आपको पहचानना है श्रोताओं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रास्ता आईना मासूम चेहरा जुल्फ रंग महल हम सफ़र गजरा गजरा और बहुत सारे शब्द इन्होंने चुने हुए हैं। दर्पण भी है हुस्न भी है ज़रा ठहरो मोहब्बत दिलदार, तो ये सारे शब्द इन्होंने चुने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है आईने में देख कर खुद को मुस्कुरा देते हैं वो उस और उस मुस्कान पर न जाने कितने दिल हार जाते हैं। तुम्हारी आंखों की चमक के आगे आईना भी फीका लगे, खुदा ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारी सूरत बनाई है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी इबारत को लिखना चाहा है। एक और श्रोता ने लिखा है कि

आज की इबारत को ध्यान से पढ़ने पर ये मुख्य शब्द निकल कर आते हैं जिन पर गाने आधारित हो सकते हैं। आईना, चेहरा, जुल्फ, हम सफर और बहुत सारे शब्द इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी प्यारी सी बात, दर्पण में दिखने वाला अक्स तो कुछ पल साथ रहता है लेकिन अच्छे कर्मों का प्रतिबिंब लोगों के दिलों में बरसों तक चमकता रहता है। एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत आत्म मंथन और प्रेम का सुंदर संगम लगती है। आईना केवल चेहरा नहीं दिखाता बल्कि दिल के भीतर छिपे एहसासों, यादों, इंतजार और मोहब्बत को भी सामने ले आता है। ऐसा लगता है जैसे आज का सुरीला सफर हमें अपने ही दिल से मिलने, मुस्कुराने और जीवन के सबसे सच्चे हम सफर अपने आप को पहचानने की ओर ले जाएगा। जी हाँ श्रोताओ, और यही सब बातें जो हैं, कई बार हम जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो हम अपने दिल से पूछते हैं, और इन्हीं सब बातों का जिक्र आज गीतों के जरिए आपके सामने आया है। कभी कभी तो आईने के सामने खड़े होकर हम बातें भी करते हैं, कभी अपने आप से कुछ कहते हैं तो कभी अपने आप से लड़ भी पड़ते हैं।

वैजंती माला और दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लीडर फिल्म से। शकील बदायूनी का लिखा नौशाद का संगीत था, जिसके पहले आपने सुना मेरे महबूब फिल्म का गीत जो साधना पर फिल्माया गया नौशाद की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि यदि आईना में साफ दिखता नहीं है तो आईना साफ करने के साथ साथ एक बार अपने ऐनक के ग्लास को भी साफ कर देखें। हर बार गलती सामने वाले की नहीं होती, एक बार अपने अंदर भी झांक लें। एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रस्तुत गद्यमयी इबारत में आईने की बात है। आईना हर किसी के चेहरे की सच्चाई बयां किया करता है और इस

की वे उपमा चेहरे के समान ही है। एक चेहरे की हकीकत को यथा योग्य दिखाने वाले उस आईने को बाहर आईने के समान अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उस हृदय रूपी आईने के कृत्य उस आईने के मन दर्पण की अभिव्यक्ति करने में पूरी तरह समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे ही अभिव्यक्ति को जो है वो बता रही है ये इबारत। जी हाँ, और आईना बहुत सारी अभिव्यक्तियों को ध्यान में हमारे लाता है। श्रोताओं, ऐसे ही गीत आज हमने पिरोए हैं और अगला गीत भी बिल्कुल वैसा ही है। एक और श्रोता लिखते हैं कि दर्पण जीवन के विभिन्न रंग दिखाता है, मोहब्बत, प्रतीक्षा, रूठना मनाना, अपने और बीते हुए रिश्तों की परछाइयाँ। अतः आईना एक एहसास कराता है कि सच्चा हम सफ़र कोई और नहीं बल्कि स्वयं का दिल और अपनी पहचान है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आईना हकीकत बयां करता है, कुछ पाता नहीं, सामने लाता है आईना। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, आईना वही रहता है जो वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। वैसे कांच की बात अगर करें श्रोताओं, जिसे आईना बनता है तो इसके बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, फूलदान भी बनते हैं, और एक ज़माना था जब खिलौने भी बहुत बना करते थे और हम सब ख़रीदा भी करते थे। कांच के खिलौनों की अगर कोई यादें हैं तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। और बहुत सारे शीशे कई सारे ऐतिहासिक महलों में लगाए गए हैं, उनके बारे में अगर आपकी कोई जानकारी है तो आप हमें ज़रूर लिखें। और इस गीत को पहचाने अदाकार बताने हैं आपको। कई बार दर्पण देखते देखते देर भी हो जाती है, और ऐसा ही ये गीत है।

सी नीरज के बोल थे, रोशन का संगीत था। शीश महल जो आमेर का किला है श्रोताओं, उसमें बड़ा ही खूबसूरत तरीके से, बड़े ही खूबसूरत तरीके से इसे बनाया गया है। 1727 में जिसे राजा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था। रानी महल में यहाँ आप देख सकते हैं कि तारों को देखने के लिए दीवारों और छतों पर हजारों दर्पण लगाए गए थे, जो एक दिए की अगर रोशनी की बात करें तो उससे भी जगमगा उठते थे। और अब ये गीत आप सुनिए और बताइए कि ऐसा लॉकेट आपके पास भी था क्या? इस लॉकेट में किसकी सूरत या शक्ल नजर आती है?

शालीमार फिल्म का ये गीत आपने सुना, जीनत अमान और धर्मेंद्र भी इसमें नजर आते हैं। लॉकेट में जो एक टूटे शीशे में नजर आती है वो धर्मेंद्र की तस्वीर है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कांच का पेपर वेट बहुत सुंदर लगता है, कांच के दो तीन फ्लावर पॉट हैं हमारे घर में, कांच के और भी सुंदर डेकोरेटिव पीसेज हैं, पर बस डर लग रहा है कि टूट ना जाए। जहाँ टूटने का तो खतरा रहता है, ऐसा ही दिल भी है और जो शीशे का ही होता है। तो इस बारे में भी अगर आप कुछ लिखना

अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का ये गीत है, आपको कलाकार बताने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि, दीपावली और शादियों के दौरान शीशे के काम वाला कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। गुजरात का प्रसिद्ध चनिया चोली और राजस्थान का घाघरा चोली बिना मिरर वर्क के अधूरे माने जाते हैं। आधुनिक समय में ये कला सिर्फ पारंपरिक परिधानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि पश्चिम पहनावे जैसे जैकेट, कुर्तियाँ, स्कर्ट, बैग और होम डेकोर के में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है।

राज कपूर और राजश्री पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी अराउंड द वर्ल्ड, मुकेश और शारदा की आवाजें थी। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखी है और यही है आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सभी की प्रतिक्रियाओं, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों, सांझ दिन और रात के मधुर मिलन का वो क्षण है जहाँ प्रकृति अपनी समस्त थकान उतारकर एक शांत, गंभीर और सौम्य रूप धारण कर लेती है। जब सूर्य अपनी सुनहरी किरणों को समेटते हुए क्षितिज की गोद में विश्राम लेने लगता है, तब आकाश के विस्तार पर लालिमा, केसरिया और धूसर रंगों की छटा बिखर जाती है। ये दृश्य केवल आंखों को ही नहीं, मन को भी एक अद्भुत शांति से भर देते हैं। सांझ का समय जीवन के उस पड़ाव का प्रतीक है जहाँ गति की तीव्रता मंद होकर आत्मचिंतन में परिवर्तित हो जाती है।

0: दोस्तों, दिन भर की आपाधापी, संघर्ष और कोलाहल के पश्चात ये सांझ की घड़ी ठहर कर स्वयं से मिलने का अवसर प्रदान करती है। पक्षियों का अपने घोंसलों की ओर लौटना, गायों का बछड़ों के पास आना, रंभाना, मंदिरों की घंटियों का मधुर निनाद और आकाश में उभरती प्रथम तारा रश्मि, ये सभी दृश्य सांझ को एक आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करते हैं। भारतीय संस्कृति में सांझ का विशेष महत्व रहा है। इसे संध्या वंदन का समय माना गया है। जब मनुष्य अपने दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर ईश्वर का स्मरण करता है, ये समय आत्मा की शुद्धि और मन की एकाग्रता का प्रतीक है।
1: कहीं दूर

दोस्तों, सांझ हमें सिखाती है कि हर अंत के भीतर एक नए आरंभ की संभावना छिपी होती है। जैसे दिन का अवसान रात्रि का द्वार खोलता है, वैसे ही जीवन में प्रत्येक संधि एक नई दिशा का संकेत देती है। साहित्य और काव्य में भी सांझ को विरह, प्रतीक्षा और स्मृति का भावपूर्ण रूप मिला है। प्रिय के वियोग में डूबी नायिका के लिए सांझ का धुंधलका उसके मन की व्याकुलता को और गहरा कर देता है। वहीं किसी साधक के लिए यही सांझ और ध्यान और समाधि का पावन क्षण बन जाती है। सांझ केवल दिन का एक भाग नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का एक सजीव प्रतीक है, जो हमें संतुलन, शांति और आत्म अवलोकन का संदेश देती है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: ये विविध भारती है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण

0: पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा।

हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि

0: पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फ

0: ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकोली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनो

कॉन्वेंट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण

0: ना ओढ़ो हूँ। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: का कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओ नमस्कार, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हो रहे हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओ, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को, संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहू नगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, निलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मन चाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूँ।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है।
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों चुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम?
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं
1: हुआ। क्यों नहीं हुआ था? कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक

0: सार्थक व्याख्या ढूंढी, जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
1: महाराज,
0: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है, तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज है। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज, किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए, पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गंधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर कल्याण।

0: आज युद्ध का प्रथम दिन है गांधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं ये निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज, जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलो

चित्रसेन, उपचित्र, सुचारू, चित्राक्ष, नंद और उपनंद मारे गए।

दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद

यानी गान पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थककर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो। यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष की भांति भूमि पर गिर।
0: बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई। सब वेदनाएं सो गईं, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर ढोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें दीर्घजीवी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोंछो कांधारी, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी।

0: उठो।
1: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
2: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
1: शांत हो राजमाता।
2: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
1: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहा, राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
2: नहीं कृष्णा, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
1: देवी गांधारी,
2: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
1: मुझे क्षमा करो माता।
2: दुर्योधन बुरा होगा, दुशासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
1: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
2: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ, जाओ। मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। उदात्मा और संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या

0: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ।
1: तब
0: यहाँ की खुली सुगंधित वायु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है, उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
1: सत्य ही तो एक ज्योतिहीन के गले बदने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
0: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
1: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृकुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
0: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
1: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूंगा अंधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
0: महाराज,
1: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी ना?
0: कही थी।
1: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
0: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी? आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी?
1: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
0: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
1: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी, तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
0: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
1: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
0: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
1: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए

0: ये अनिवार्य बना दिया और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरुवंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओह, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर हरनिश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज, केवल संख्या के पर्याय है। इसीलिए वो 100 होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: गांधारी देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हठ धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकिए रुकिए, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है। आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं।

अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसका निर्देशन किया सुदर्शन कुमार ने। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति आपने सुनी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और सामाजिकता भी।

0: तो कभी छाऊं।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, हम उनके गीतों की बात कर रहे हैं, देशभक्ति गीतों की, साथ ही उन्होंने बहुत सारे भजन भी लिखे हैं प्रदीप जी ने, और जिन्हें हम सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा भजन ज्यादा अच्छा है या कौन सा कम है, तो आप बताइए कि भजन लिखने की जो उनकी आदत थी वो कैसे पड़ी और किस तरह से भजन की दुनिया में भी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत भजन लिखे।
3: उनकी माँ के द्वारा जो लोकगीत गाए जाते थे, भजन गाए जाते थे, वो भी उन्होंने बहुत आत्मसात किए बचपन से। तो भजन की आदत तो उनको भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति प्रेम। लेकिन आपको एक बात ये बताऊं कि भगवान उनके लिए कौन थे? अदृश्य शक्ति। ये नहीं है कि वो मंदिर जाएंगे या वहां जाके कुछ पूजा करेंगे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं मानते थे, रिचुअल्स में नहीं। लेकिन उनके लिए आकाश में बैठा वो भगवान था जो उनकी बात सुनते हैं। अगर कभी आप सुनेंगे उनके गीत तो वो भगवान को भी ऐसे संबोधित करते हैं कि जो वो अपनापन से करते हैं। अगर आप ऊपर देख के ये कहे कि सूरज रे जलते रहना, रे हाँ, तो ये रे जो है ना वो एक प्रेम का संबोधन है। तो उन्होंने भगवान को भी ऐसे ही संबोधन किया और गाने भी और भजन भी बहुत पॉपुलर लिखे। उनकी शुरुआत का एक भजन था, मैं तो आरती उतारू राधे श्याम की रे, राधे श्याम की रे मुक्ति धाम की रे, ये उनका शुरुआत की पहला भजन था फिल्म के लिए। और उसके बाद में अगर आप आगे चले तो मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की,
2: वो तो बहुत पॉपुलर था।
3: तो भजन लिखने में और मदद करो संतोषी माता, तो उनको भगवान के प्रति जो था ना वो भी आस्था मन से आती थी, ना कोई मंदिर में जाके। तो कई भजन ऐसे हैं और बैठ के लोग सुनते हैं तो वो भजन भगवान के भजन है। हरिदर्शन फिल्म आई थी उसमें बहुत सारे भजन थे, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान, वो भी एक बहुत पॉपुलर गीत था।
2: बिल्कुल,
3: बहुत सारे हरिदर्शन फिल्म के गाने हैं जो भजन है।
2: तो घर का माहौल कभी ऐसा हुआ कि आप बहनों ने मिलकर भी उन भजनों को गाया अपनी माँ के साथ?
3: बहुत बार, माँ के साथ तो नहीं, माँ तो नहीं गाती थी।
2: अच्छा।
3: माँ तो कहे कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं गाऊंगी हम गाते थे
2: अच्छा
3: तो जय जय नारायण नारायण हरि हरि, वो हमको बहुत अच्छा लगता था।
2: तो मितुल जी आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें?
3: जरूर सुनवाइए।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी। फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा

0: कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं,
0: अच्छा
1: जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा, बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जागृत हुए। जी
1: कि
0: जी
1: भाई ये काम आप क्यों
0: हाँ,
1: करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं तो
0: आपकी भी
1: बड़ी
0: अपनी
1: हो
0: एक
1: गई थी
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने
1: तो,
0: शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी, जाएगी बाहर जाके। मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं, ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो
0: होता
1: फिर
0: है
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है कि
0: खूबसूरती के
1: मेरे
0: साथ
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: यो तुम
1: तुम कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम
0: आहा,
1: कौन
0: क्या
1: हो।
0: बात है, क्या
1: हाँ,
0: बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले,
0: जी।
1: कितना सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ,
0: आहा।
1: तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है। और एक हल्का फुल्का सा गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
0: क्या मेरा
1: क्या
0: प्यार
1: मेरा
0: पसंद है
1: प्यार
0: तुम्हें?
1: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
0: बहुत
1: गीत है,
0: बहुत स्वीट।
1: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
0: हर पल के गीत है ये,
1: हर
0: हर
1: पल के। तो
0: मौके
1: ये
0: के गीत
1: रोमांटिक
0: है।
1: गाने भी उन्होंने
0: जी
1: लिखे,
0: जी
1: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रुमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रुमानी कविता उनकी कलम से निकली, रुमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी,
0: तो उन्होंने को वहीं खड़े रहते
1: बिल्कुल,
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था
1: जी।
0: और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहां खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कवि प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने

0: कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता। लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है।
1: जी बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे। और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून।
0: हाँ,
1: काले नहीं, सफेद
0: सफेद।
1: खैर, एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा। उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे। ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं। रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए।

0: ये सीमेंट आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
1: अच्छा,
0: इतनी मजबूत है।
1: क्या बात है,
0: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
1: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
0: जी
1: उसको खड़ा किया।
0: हाँ
1: जी मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
0: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
1: जी
0: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं। और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
1: जी,
0: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज़ दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर करके स्वस्तिक ड्रॉ किया।
1: जी,
0: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
1: जी,
0: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहां से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना
1: लक्ष्मी के, नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
0: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
1: ये तो आपने बचपन की बात बताई जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी,
0: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं, नहीं मुझे वो मजा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है। तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
1: जी,
0: बोलती है आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं, उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है। मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ। बोलती है नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए। और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं, आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए। मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं। क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था। उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए। कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए। मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में।
1: जी, जी।
0: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है, आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में, वही हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी।
1: अच्छा।
0: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
1: जी,
0: गई
1: जी।
0: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया, और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के। तो ये ऐसे शुरू हो गया। तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा।

0: मिथुन जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही?
1: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती हैं। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
0: अच्छा,
1: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना,
0: ड्राइंग
1: करते
0: तो
1: रहे।
0: आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
1: बहुत बहुमूल्य चीज है मेरे पास, आज खजाना है वो।
0: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
0: है,
1: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं। और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी, और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
0: ऑयल पेंटिंग
1: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो

0: अब वहां बंध
1: बंध
0: जाते
1: जाते
0: हैं,
1: हैं जी।
0: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते
0: हाँ,
1: हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर
0: वही तो, वो
1: निर्भर
0: कल्पना
1: करता है।
0: शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
0: आपको
1: आर्ट।
0: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
0: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी।
0: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: दी, बहुत बड़ी बात। आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी
0: नहीं,
1: कला को एक कला कृति रहने दिया है।
0: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप
1: जो
0: है वो
1: हुनर
0: कम हो
1: है।
0: जाएगा, तो
1: हाँ।
0: इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती
1: जी
0: हूँ,
1: जी
0: वो
1: जी
0: वैसे ही रहता है वहां पर।
1: जी
0: आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के
1: जी
0: लिए,
1: बिल्कुल
0: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
1: जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप।
0: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं
1: जी
0: और
1: जी
0: आसमान की बात कर
1: बात
0: रहे
1: कर रहे
0: हैं।
1: हैं, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
0: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा हैं, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए, तो उसके लिए पोर्ट्रेट है। चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवस पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: इस तरह का, सभी तरह के
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपने पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं,
1: रहती हैं और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: इतने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही है?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है, बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है। हाँ। ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम है।
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, so, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है। और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल
1: जी
0: वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनकी जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से। और आज की ये बातचीत बस यहीं तक, अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले उनकी यादों की। उजाले

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपने आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

FM एंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र है। FM रेडियो लेक सिटी शाम के 5 बजने वाले हैं। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ हैं मानस।
1: दोस्तों, आज का कार्यक्रम होने वाला है जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर। शुरुआत करेंगे न्यू गैजेट सेगमेंट से, जिसमें जानेंगे फोरेंसिक लैब में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरणों के बारे में। सेहतनामा में बात करेंगे ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। फिल्मी दुनिया में चर्चा होगी जुबिन नौटियाल और प्रीतम चक्रवर्ती की। साथ ही विश्व रक्तदाता दिवस के महत्व को समझेंगे। सुशांत सिंह राजपूत और शर्वरी वाघ के बारे में भी जानेंगे, और किरण खेर, कुमार मंगलम बिरला और निखत जरीन से जुड़ी रोचक जानकारी भी हम आपको आज देंगे।
0: बिल्कुल, और अंत में आज के दिन का इतिहास और स्पोर्ट्स अपडेट से जुड़ी खास जानकारी भी आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का युवाणी कार्यक्रम इस शानदार गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं काव्य पाठ सारा आलम शाह द्वारा।
3: मेरी पहली कविता का शीर्षक है वो इंसान बड़ा महान। रक्त के एक बूंद की कीमत भी तब समझ आती है जब खुद को या किसी अपने को इसकी जरूरत पड़ जाती है। जीवन बचाते दूसरों का करके उनकी परेशानियों का समाधान, वो इंसान बड़ा महान जिसने किया रक्तदान। दूसरों की अंधेरी दुनिया में रोशनी के दीप जलाते हैं। कुछ फरिश्ते मरने के बाद भी अपनी आंखों से दूसरों को दुनिया दिखाते हैं। नेत्रदान की सोच नहीं है आसान, लेकिन ये कदम लाता है समाज में बड़ा बदलाव, वो इंसान बड़ा महान जिसने किया नेत्रदान। जरूरतमंद के लिए कम नहीं है ये वरदान, अगर कोई उनके लिए कर जाए अंगदान। ये न केवल देता है एक व्यक्ति को जीवन दान, लेकिन लाता है पूरे परिवार के चेहरे पर फिर से नई मुस्कान, वो इंसान बड़ा महान जिसने किया अंगदान, वो इंसान बड़ा महान जिसने किया रक्तदान। मेरी अगली कविता है खूबसूरती पर। खूबसूरती आखिर क्या है? चेहरे का रंग है या जुल्फों का ढंग है? आंखों की चमक है या गजरे की महक है? दिलों का एहसास है या कोई मीठी आवाज है या लफ्जों का अंदाजे बयां है? खूबसूरती आखिर क्या है? नैनों का काजल है या साड़ी का आंचल है? क्या ये अच्छाई का बर्ताव है या सच्चाई का भाव है? इंसानी फितरत है या खुदा की कुदरत है या पलकों की हया है? खूबसूरती आखिर क्या है? खूबसूरती आखिर क्या है? मेरी अगली कविता है दोस्ती पर। दोस्ती एक अनोखा एहसास, ऐसा इंसान जो पराया होकर भी रहता हमारे दिल के पास। शरारतें करने में जो हमेशा देता आपका साथ, सच्ची दोस्ती का महत्व जीवन में होता है बहुत खास। वो दोस्त ही क्या जो बातें करने पर अलग ना बिठाए जाए? वो दोस्त ही क्या जो आपके हिस्से का टिफिन ना खाए? वो दोस्त ही क्या जो एग्ज़ाम के एक घंटे पहले आपको पूरा चैप्टर ना पढ़ाए? वो दोस्त ही क्या जो आपके लिए दूसरों से पेन ना मांग कर लाए? वो दोस्त ही क्या जो बिन कहे आपके मन की बात ना समझ जाए? वो दोस्त ही क्या जो अजीबोगरीब बातें करके आपको ना हंसाए? साथ में की गई हर एक नादानियाँ, होमवर्क की बातें हो या भूत की कहानियाँ, इनके बिना तो हमारी यादें भी अधूरी हैं। सभी के जीवन में एक दोस्त होना तो बेहद जरूरी है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है काश तुम। काश तुम बिन कहे बिन बताए मेरी बात समझ

लो, मैं कोशिश करूं छुपाने की जो तुम मेरी आवाज पढ़ लो। सिर्फ औरों के लिए हो मेरी झूठी मुस्कान, तुम मेरा नकाब पढ़ लो। काश तुम बिन कहे बिन बताए मेरे जज्बात पढ़ लो। काश तुम बिन कहे बिन बताए मेरे जज्बात पढ़ लो। मेरी अगली कविता है कुछ लम्हे, जो कि मैंने लिखी है इंट्रोवर्ट्स के लिए। कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ, कोई कागज़ बस अपने पास चाहती हूँ। किसी कविता में डूबना चाहती हूँ, कोई धुन अकेले सुनना चाहती हूँ। मैं नहीं किसी से खफा, ना ही हूँ नाराज़, बस कुछ वक्त चाहिए अपने लिए, जहाँ हो बस मैं और मेरे अल्फाज। दिन के शोर शराबे के बाद खामोशी सी एक रात चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ। ज़रूरी तो नहीं कि हर अकेलेपन की कोई वजह हो, किसे पता लोगों से दूर संडे की उस लंबी मीठी नींद में भी कोई मज़ा हो। दोस्तों के साथ बाहर घूमने में माना कि जुनून है, मगर कभी कभी घर पर रहकर शांति से कुछ लिखने में भी अलग सा सुकून है। पूरे हफ्ते की लंबी भागदौड़ के बाद खामोशी का एहसास चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ। किसी किताब की कहानी को आजमाना चाहती हूँ, कुछ लफ्ज़ अपने भी पन्नों पर उतारना चाहती हूँ। बारिश की उन बूंदों का नज़ारा चाहती हूँ, ख्यालों में डूबने का बहाना चाहती हूँ। अपने आसपास चिड़िया की मीठी आवाज़ चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ, कुछ लम्हे बस खुद के साथ चाहती हूँ। मेरी अगली कविता है राही और मंजिल के बीच हो रही वार्तालाप के ऊपर। बदलती राहों से ये मन अक्सर घबराता है, न जाने अगले मुड़ाव पर क्या मिले, इस ख्याल से ही डर जाता है। राही चाहे आगे बढ़ना, लेकिन अंधेरों से कतराता है, अनहोनी का डर तो अक्सर उसे सताता है। अनजाने रास्तों से तंग आकर जब राही बैठ जाता है, तब मंजिल कहती राही से, तू कदम तो बढ़ा, राहें अपने आप नजर आएंगी, तेरी उम्मीदों की चमक से अंधेरी गलियां भी रोशन हो जाएंगी। शुरुआत से पहले क्यों डरता है चट्टानों से, शुरुआत से पहले क्यों डरता है चट्टानों से, तेरी हिम्मत को देख एक दिन ये भी रेत की तरह बिखर जाएंगे। राही फिर थोड़ा घबराया, मगर कर हौसले को बुलंद, इस बार कदम उठाया। इन कठिन रास्तों के हर मोड़ पर उसने एक नई चुनौती पाई, बेजान सी ये राहें और गहरी तन्हाई। धुंधली सी जब उसको तकदीर नजर आई, मंजिल ने राही को एक बार फिर आवाज़ लगाई, चलते चलते तुम ओ राही फिर ना रुक जाना, अभी तो है सफ़र बाकी तुमको मुझ तक है आना। हर मुश्किल होगी सरल जो तेरी हिम्मत बरकरार है, यूं ना भयभीत हो अंधेरों से, उजाले को तेरा इंतज़ार है। यूं ना भयभीत हो अंधेरों से, उजाले को तेरा इंतज़ार है। राही फिर मंजिल की ओर चला, लेकिन इस बार रास्ता सरल लगा।

0: ये मतलबी इंसान मेरे पास अब मुझसे जवाबों की भीख मांगता है, और उसका क्या जो तू साल भर मुझे धूल की परत खिलाता है। वैसे तो उस मोबाइल के ही आसपास मंडराता है, लेकिन परीक्षा सर पर आते ही मेरी तारीफों के पुल बांधता है। अरे रहने भी दे तेरी ये सारी झूठी बातें, जानती हूँ अधूरे ही रह जाएंगे तेरे ये मक्कार वादे। वैसे तो तू बड़े आराम से इंस्टा की रील्स में मन लगाता है, और ज़रूरत पड़ते ही अफरा तफरी में मेरे पन्ने पलटाता है। मैं कितनी मोटी हूँ भारी हूँ ये बात अपने हर दोस्त को बतलाता है। मैं कितनी बोरिंग हूँ बेकार हूँ ये ताने मुझे रोज सुनाता है। अब क्यों आया है मेरे पास अपनी फरमाइश लेकर? मैं सिर्फ उसे समझ आती हूँ जो मुझ पर ध्यान लगाता है। तू चाहे लाख पन्ने पलटा ले, मैं सिर्फ उसी को याद रहूंगी जो मुझे सच में चाहता है। क्यों जानकर हैरानी हुई कि किताबों के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं? तभी तो हमारा दिया हुआ ज्ञान सबके पल्ले नहीं पड़ पाता है। वो कहते हैं ना कि असली हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी ही पहचानता है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गलती या गुनाह। अगर कोई करता तुमसे ये सवाल तो आखिर क्या होते तुम्हारे जवाब? बात कोई अधूरी सुनकर उस पर न कोई विचार किया, बिन सबूत बिन गवाह के ही किसी को मुजरिम करार किया। गलती या गुनाह किया, कोई वादा करके फिर इनकार किया, उल्टा उस शख्स के झूठे होने पर इकरार किया। गलती या गुनाह किया, अपने मजाक के लिए किसी और का जीना हराम किया, मजाक मजाक में उस इंसान का चरित्र भी खराब किया। गलती या गुनाह किया, जीवन में आगे बढ़ने के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया, पैसों की लालच में दोस्त से ही दगा किया। गलती या गुनाह किया, किसी तीसरे के भड़काने पर अपना संबंध तोड़ दिया, सफाई देने का ना सामने वाले को मौका दिया। गलती या गुनाह किया, किसी की छोटी गलती पर भी इस हद तक खुद से दूर किया, मुश्किल में भी उसे अकेलेपन से मजबूर किया। गलती या गुनाह किया, किसी अफवाह को बढ़ा चढ़ा कर फैला दिया, सच ना पता होने पर भी किसी की सूरत को झूठ से मैला किया। गलती या गुनाह किया, किसी इंसान को अपना कहकर कभी उसका साथ ना दिया, मुश्किलों से संभलने को कभी अपना हाथ ना दिया। गलती या गुनाह किया, दोषी का पता होने पर भी सच से खुद को अनदेखा किया, सब कुछ सोच समझ कर भी अनजान होने का नाटक किया। गलती या गुनाह किया, गलती या गुनाह किया। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ सारा आलम शाह द्वारा।
2: बिल्कुल, और दोस्तों किसी भी अपराध का रहस्य सुलझाने में सिर्फ पुलिस की जांच ही नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक भी अहम भूमिका निभाती है। जब चोरी हत्या या साइबर अपराध जैसे मामले जो है वो सामने आते हैं तो जांच की अहम कड़ियां सिर्फ फॉरेंसिक लैब तक पहुंचाई जाती है।
1: बिल्कुल मोहित, जो फॉरेंसिक लैब है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे सबूतों की जाँच की जाती है जो अक्सर सामान्य नज़रों से नहीं दिखाई देते।
2: तो आइए आज के न्यू गैजेट सेगमेंट में जानते हैं फॉरेंसिक लैब में इस्तेमाल होने वाले कुछ आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के बारे में जो अपराध के रहस्य सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल मोहित, आज की जो फॉरेंसिक लैब है इसमें जो डीएनए एनालाइजर जैसे एडवांस उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी मदद से खून बाद और अन्य जो जैविक नमूने होते हैं इनकी जाँच करके व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। कई बार वर्षों पुराने जो मामले होते हैं इनकी भी इसी तकनीक की मदद से सुलझाया जाता है।
2: बिल्कुल, और इसके अलावा 3D क्राइम सीन स्कैनर भी जांच एजेंसियों के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होता है। यह घटना स्थल का एक डिटेल मॉडल तैयार करता है जिससे जांच अधिकारी बाद में जो है पूरे घटना स्थल का बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं।
1: और साइबर अपराधों की जो बढ़ती घटनाओं को देखते हुए भी डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। इनकी मदद से जो मोबाइल और कंप्यूटर से डिलीट किया गया डेटा भी रिकवर किया जा सकता है जो जाँच में काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत बनते हैं।
2: साथ ही फिंगरप्रिंट जांच के लिए ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। यह कुछ ही समय में लाखों रिकॉर्ड से मिलान कर संभावित व्यक्ति की पहचान करने में काफ़ी मदद करता है।
1: इसके साथ ही यूवी और इंफ्रारेड कैमरे का भी इस्तेमाल किए जाते हैं जिनकी सहायता से ऐसे निशानों और सबूत खोजे जा सकते हैं जो कि सामान्य आँखों से नहीं दिखाई देते।
2: यानी आधुनिक फॉरेंसिक लैब्स में इस्तेमाल होने वाले हाईटेक गैजेट्स अपराधों की जाँच को अधिक तेज सटीक और वैज्ञानिक बना रहे हैं।

0: सही कहा मोहित, तकनीक की मदद से आज जांच एजेंसियां सच्चाई तक पहले से कहीं ज़्यादा तेजी और विश्वसनीयता के साथ पहुंचती जा रही है। तो दोस्तों यही था आज का हमारा न्यू गैजेट्स का सेगमेंट फोर फोरेंसिक लैब्स।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ बीमारियां उम्र बढ़ने के साथ होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो जन्म से ही व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई होती है और धीरे धीरे उसके शरीर को प्रभावित भी करती है।
1: बिल्कुल मोहित, और आज के सेहतनामा में भी हम ऐसी एक दुर्लभ बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी कि DMD, जो शरीर के जो डिस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन की कमी के कारण होती है। यह प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से जो मांसपेशियां हैं वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है।
0: बिल्कुल, और इस बीमारी के लक्षण आमतौर पर 2 से 5 साल की उम्र के बीच दिखाई देने लगते हैं। बच्चों को चलने, दौड़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने या जमीन से उठने में कठिनाई हो सकती है। कई बार बच्चे सामान्य उम्र की तुलना में देरी से चलना शुरू करते हैं।
1: DMD से प्रभावित बच्चों में बार बार गिरना, पैरों की जो मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई दिखाई देती है, और जो शारीरिक गतिविधियाँ होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। ये इसके आम लक्षण हो सकते हैं, और समय के साथ अगर ये कमज़ोर और शरीर की जो अन्य मांसपेशियों को भी प्रभावित करती है।
0: बिल्कुल, और विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी मुख्य रूप से लड़कों में अधिक देखने को मिलती है। इसकी पहचान के लिए ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट जैसे परीक्षण किए जाते हैं, जिससे बीमारी का समय पर पता चल सकता है।
1: हालांकि वर्तमान में इसका पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय पर पहचान और दवाओं से जो फिजियोथेरेपी है, नियमित व्यायाम है और उचित देखभाल से इसका जो प्रभाव है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल, और आज चिकित्सा विज्ञान में लगातार रिसर्च हो रही है और नई उपचार पद्धतियों पर काम भी किया जा रहा है, जिससे भविष्य में DMD से बेहतर इलाज की उम्मीद बढ़ रही है।
1: यदि किसी बच्चे में मांसपेशियों की जो असामान्य कमजोरी या और बार बार गिरना या फिर विकास में देरी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो फिर विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। समय पर जांच और सही मार्गदर्शन बेहतर देखभाल और आधार बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के सेहतनामा में बस इतना ही।

0: दोस्तों बात करेंगे दो ऐसी हस्तियों की जिन्होंने अपनी आवाज़ और धुनों से करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। एक है मशहूर गायक जुबिन नौटियाल और दूसरे हैं जाने माने संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती।
1: बिल्कुल मोहित, एक तरफ जुबिन नौटियाल अपने दिल को छू लेने वाली गायकी के लिए जाने जाते हैं तो दूसरी ओर प्रीतम चक्रवर्ती ने बॉलीवुड को अनगिनत सुपरहिट गाने देकर और यादगार संगीत दिया है। साथ ही आज ही के दिन इन दोनों का जन्मदिन भी है।
0: बिल्कुल मानस, शुरुआत करते हैं जुबिन नौटियाल से। उनका जन्म 14 जून 1989 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति उनका लगाव था। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली और गिटार, पियानो, हारमोनियम व ड्रम जैसे कई वाद्य यंत्र बजाने में भी महारत हासिल की। साल 2014 में फिल्म सोनाली केबल के गीत एक मुलाकात से उन्हें बॉलीवुड में कदम रखा।
1: इसके बाद जुबिन ने तुम ही आना, तुझे कितना चाहें और हम राता लंबिया जंबिया, लुट गए, मोनिका और बरसात की धुन जैसे कई लोकप्रिय गीत गाए। उनकी मधुर आवाज़ और भावपूर्ण अंदाज ने उन्हें देश के सबसे पसंदीदा गायकों में शामिल किया।

0: और अवार्ड्स की बात करें तो जुबिन को राता लंबिया के लिए 2022 में आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का सम्मान भी मिला। इसके अलावा उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड और राइजिंग म्यूजिकल स्टार अवार्ड जैसे कई सम्मान भी प्राप्त हुए।
1: वहीं प्रीतम चक्रवर्ती का जन्म 14 जून को 1971 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने करियर की शुरुआत उन्होंने विज्ञापनों और टीवी कार्यक्रमों के लिए संगीत तैयार करके की। फिल्म धूम का जो संगीत था वो उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ।
0: इसके बाद प्रीतम ने जब वी मेट, लाइफ इन अ मेट्रो, लव आजकल, बर्फी, ये जवानी है दीवानी, ए दिल है मुश्किल, ब्रह्मास्त्र और डंकी जैसी फिल्मों में शानदार संगीत दिया। उनकी धुनों में भारतीय और आधुनिक संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलता है।
1: उपलब्धियों की बात करें तो प्रीतम को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर अवार्ड और 5 आईफा अवार्ड के साथ में कई अन्य प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने जैम 8 नामक म्यूजिक प्लेटफॉर्म की भी स्थापना की जो नए कलाकारों को अवसर प्रदान करता है।
0: तो दोस्तों, अपनी आवाज़ से जादू बिखेरने वाले जुबिन नौटियाल और अपनी धुन से संगीत को नई पहचान देने वाले प्रीतम चक्रवर्ती को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।

0: दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे विशेष दिवस की जो इंसानियत सेवा और जीवन बचाने के संदेश को समर्पित है। दोस्तों हर साल 14 जून को पूरे विश्व में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल मोहित, यह दिन उन लाखों स्वैच्छिक और निःशुल्क रक्तदाताओं को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करके अनगिनत लाखों की लोगों की जान बचाते हैं और दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, प्रसव, कैंसर उपचार और कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए रक्त जो है वो जीवन दायिनी का रूप की भूमिका निभाता है।
0: बिल्कुल, और इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2004 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसके सहयोगी संगठनों द्वारा की गई थी। और आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज कर मेडिकल साइंस को महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
1: इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना और सुरक्षित रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, साथ ही रक्तदाताओं के योगदान के प्रति आभार व्यक्त करना भी है। साथ ही यह संदेश देना भी है कि नियमित रक्तदान से अनेक जिंदगियां बचाई जा सकती है।
0: और इस साल के अभियान का उद्देश्य नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना, रक्त एवं प्लाज्मा दान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना, रक्तदाताओं के योगदान को सम्मान देना तथा सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को राष्ट्रीय रक्त कार्यक्रमों और मजबूती बनाने के लिए प्रेरित करना है।
1: साथ ही इस साल के थीम की अगर बात करें तो वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स, यानी कि मानवता की एक बूंद रक्तदान करें और जीवन बचाएं। यह थीम हमें याद दिलाती है कि रक्तदान केवल एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है बल्कि मानवता, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।
0: और रक्तदान का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आधुनिक चिकित्सा में चाहे कितनी भी प्रकृति हो जाए, रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प जो है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। सुरक्षित रक्त की उपलब्धता आज भी पूरी तरह मानव दान पर ही निर्भर करती है।
1: इसलिए दोस्तों, यदि आप स्वस्थ हैं और ब्लड डोनेशन करने के योग्य हैं तो समय समय पर ब्लड डोनेशन करें और आप किसी ज़रूरतमंद के जो जीवन की आशा की नई किरण भी बन सकते हैं। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी ज़िंदगी बचा सकता है।
0: तो आइए इस विश्व रक्तदाता दिवस पर ब्लड डोनेशन के महत्व को समझें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें और मानवता की इस अनमोल सेवा में अपनी भागीदारी निभाएं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, बात करेंगे हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकारों की जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई।
4: एक और हम याद कर रहे हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वहीं दूसरी ओर जन्मदिन है युवा अभिनेत्री शर्वरी बाग का।
3: बिल्कुल मानस, सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। उनका जन्म 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल और पवित्र रिश्ता से की, फिर बॉलीवुड में कई पहुँच है, PK, MS धोनी, केदारनाथ, छिछोरे और दिल बेचारा जैसी यादगार फिल्मों में अभिनय भी किया।
4: सुशांत को उनके शानदार अभिनय के लिए कई सम्मान मिले। टीवी जगत में उन्हें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड और बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड जैसे पुरस्कार मिले। वहीं फिल्म काई पोछे के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू और प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला।
3: बिल्कुल, और सुशांत सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे बल्कि वे विज्ञान, अंतरिक्ष और खगोल शास्त्र के प्रति भी गहरी रुचि रखते थे। वे अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखते थे और उनके पास एक आधुनिक टेलीस्कोप भी था। 14 जून 2020

0: को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्में और उनका प्रेरणादायक व्यक्तित्व आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।
1: अब बात करते हैं शर्वरी वाघ की। तो 14 जून 1997 को जन्मी शर्वरी वाघ ने अपने करियर की शुरुआत सहायक निर्देशक के रूप में की। उन्होंने द फॉरगॉटन आर्मी आज़ादी के लिए वेब सीरीज से अभिनय की शुरुआत की और बंटी और बबली 2 से बॉलीवुड में कदम रखा।
0: शर्वरी को उनकी पहली फिल्म बंटी और बबली 2 के लिए फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू और IIFA स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। इसके बाद 2024 में रिलीज़ हुई मुंजिया के लिए उन्हें नई पहचान जो है वो मिली। वे युवा पीढ़ी की ये चर्चित अभिनेत्रियों में भी शामिल हैं।
1: एक और सुशांत सिंह राजपूत की प्रेरणादायक यात्रा है और शानदार उपलब्धियाँ, तो दूसरी ओर शर्वरी वाघ को तेजी से आगे बढ़ते फिल्मी सफर, दोनों ही हमें मेहनत, समर्पण और अपने सपनों पर विश्वास रखने का संदेश देते हैं। तो इसी के साथ हम शर्वरी वाघ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और सुशांत सिंह राजपूत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

0: दोस्तों बात करेंगे तीन ऐसी हस्तियों की जिनका जन्मदिन है। दोस्तों एक है प्रसिद्ध अभिनेत्री और पूर्व सांसद किरण खेर, दूसरे हैं देश के जाने माने उद्योगपति कुमार मंगल बिरला और तीसरी हैं विश्व विजेता भारतीय मुक्केबाज निकहत झरीन।
1: बिल्कुल मोहित, इन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में योगदान देकर देश का नाम है जो है रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं किरण खेर की, तो 14 जून 1952 को जन्मी किरण खेर हिंदी और पंजाबी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने सरदारी बेगम, बोरीवाली देवदास, रंग दे बसंती, मैं हूं ना, वीर ज़ारा और दोस्ताना जैसी कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया है।
0: बिल्कुल, और अभिनय के साथ साथ वे राजनीति में भी सक्रिय रही और 2014 से 2024 तक चंडीगढ़ के लोकसभा सांसद भी रही। उन्होंने सरदारी बेगम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विशेष ज्यूरी तथा बारीवाली के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सहित कई प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हुए।
1: अब बात करते हैं कुमार मंगलम बिरला की, तो 14 जून 1967 को जन्मे कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मात्र 28 वर्ष की उम्र में समूह में कमान संभाली और अपने नेतृत्व में दुनिया की जो प्रमुख औद्योगिक समूह में शामिल हो गए।
0: बिल्कुल, और उनके नेतृत्व में समूह का कारोबार कई गुना बढ़ा और आज यह 40 से अधिक देशों में कार्यरत है। उद्योग, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी उनके योगदान के लिए उन्हें 2023 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
1: और अब बात करते हैं भारत की स्टार मुक्केबाज निकहत झरीन की। 14 जून 1996 को तेलंगाना के निज़ामाबाद में जन्मी निकहत झरीन ने भारतीय बॉक्सिंग को नई पहचान दिलाई। वह लगातार 2 बार महिला विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की चुनिंदा मुक्केबाजों में शामिल है।
0: इसके अलावा उन्होंने 2022 राष्ट्रीय मंडल खेलों में स्वर्ण पदक और एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीता। खेल जगत में उत्कृष्ट के योगदान के लिए उन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया।
1: तो दोस्तों कुमार मंगलम बिरला और निकहत झरीन तीनों ने अपने अपने क्षेत्र में मेहनत, प्रतिभा और समर्पण के बल पर एक विशेष पहचान बनाई। इसी के साथ इन तीनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: दोस्तों समय है कार्यक्रम के खास हिस्से आज के दिन के इतिहास का, यानी 14 दिन के दिन इतिहास में क्या क्या खास घटनाएं हुई, आइए जानते हैं।
1: तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साल 1767 की। तो आज ही के दिन अमेरिका ने आधिकारिक रूप से अपने राष्ट्रीय ध्वज स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को अपनाया। इसी कारण अमेरिका हर वर्ष 14 जून को फ्लैग डे मनाया जाता है।
0: बात करें साल 1907 की, तो आज ही के दिन नॉर्वे की महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ।
1: अब बात करें साल 2002 की, तो आज ही के दिन भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक में विकसित मौसम संबंधी उपग्रह METSAT-1 का सफल प्रक्षेपण किया, जिसे बाद में कल्पना वन नाम दिया गया।
0: तो दोस्तों ये थी 14 जून से जुड़ी कुछ खास ऐतिहासिक घटनाएं।
1: अब दोस्तों आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स की। तो फिर हमारे जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें कल के जो मुकाबला था उसमें भारत और अफगानिस्तान के बीच में रहा, जिसे भारत ने 7 विकेट से जीता 195 रन बनाकर।
0: तो दोस्तों अब मिलते हैं इसी गीत के साथ, आपसे लेते हैं विदा। आज मैं था आपके साथ आपका रेडियो दोस्त मोहित, और मेरे साथ थे
1: मानस व्यास। नमस्कार।

हमारे युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। शाम के 6 बजने वाले हैं। सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहन

योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे डियोक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। 101.9 FM रेडियो लेक सिटी।

इवनिंग लोकल विंडो में सभी सुनने वालों का स्वागत। गुड इवनिंग दोस्तों, लीजिए सुनिए प्रोग्राम गाएं गुनगुनाए। गाएं गुनगुनाए प्रोग्राम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त बिंदा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम साथ मिलकर सुनेंगे बॉलीवुड के कुछ सदाबहार और दिल को छूने वाले गाने। दोस्तों, देखा जाए तो संगीत हमारे जीवन का ऐसा साथी है जो हर खुशी को और खूबसूरत बना देता है और हर गम को थोड़ा हल्का कर देता है। शुरुआत करते हैं इस सुरीले सफर की इस मस्ती भरे गाने के साथ।

वाकई प्यार का एहसास जितना खूबसूरत होता है उतना ही खूबसूरत होता है उसे गीतों में सुनना। आइए सुनते हैं ऐसा ही मधुर सा गीत।

अच्छा लगा ये गाना। वैसे आज भी यह गाना संगीत प्रेमियों के दिलों में खास जगह रखता है। दोस्तों कहते हैं कि जीवन एक सफर है और इस सफर में कई यादें हमारे साथ चलती हैं। अगला गीत भी जीवन के इसी सफर को बयां करता है, तो एंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
0: ओ, जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आप भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है। इनके शब्द और धुन सीधे दिल तक पहुंचते हैं। अब एक ऐसा गीत सुनते हैं जो दोस्ती की मिठास को बयां करता है। यकीन मानिए, जब आप ये गीत सुनेंगे तो आपको आपका वो खास दोस्त जरूर याद आएगा।

जीवन में सच्चे दोस्त मिल जाएं तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा दोस्त है तो उसे आज ज़रूर याद कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा। संडे का दिन है, चाहे तो मिलने भी जा सकते हैं। चलिए आप उनसे मिलिए। हम अब आपको सुनवाते हैं एक रोमांटिक सा गाना।

प्यार की मासूमियत को इस गीत से बेहतर शायद ही कोई बयां कर पाए। दोस्तों, अब थोड़ा यादों के सफर पर चलते हैं। यादें कभी मुस्कान देती हैं तो कभी आंखें नम कर देती हैं।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
8: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं।

0: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाएं गुनगुनाएं। उम्मीद है कि आपको हमारा यह संगीत सफर पसंद आ रहा होगा। संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भावनाओं की भाषा भी है। खुशी हो, उदासी हो या उत्साह, हर भावना के लिए कोई ना कोई गाना जरूर होता है। अब आपके रेडियो सेट पर वो गाना जो आप गाएंगे भी और गुनगुनाएंगे भी।

तेरे ही किस्से, तेरे ही कहानियाँ मिलेंगी मुझमें। न जाने किस किस अदा से तू आबाद है मुझमें। अब सुनते हैं वो गाना जो हर पीढ़ी को पसंद आता है।

हर पल बदलती है जिंदगी, कभी आँख का आंसू है जिंदगी तो कभी मीठी सी मुस्कान है ये जिंदगी। कहते हैं नाराज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। जो भी हो, हम तो यही कहेंगे, लव यू जिंदगी।

जिंदगी का हर पल अनमोल है। कहते हैं जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चार दिन की, उसे ऐसे जियो कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि जिंदगी को तुम मिले हो।

इस गाने के साथ ही गाएं गुनगुनाए, ये प्रोग्राम अब यही समाप्त होता है। अंत में यही दुआ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। संगीत से अपना रिश्ता बनाए रखें। अब आपकी दोस्त बृंदा लेती है विदा। अगली मुलाकात

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गायें गुनगुनाएं एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का विविध भारती केंद्र है, एफएम रेडियो लेक सिटी। और अब जुड़ते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय सेवा से और सुनते हैं शेष कार्यक्रम।
1: कार्यक्रम विशेष जयमाला आप सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: किसने कहा है किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
1: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी।
1: सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा, उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान के खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है। ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे

जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर।

फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे, जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे।

0: सर्वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम।
1: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में इस समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे।

फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहां लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई।

0: साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाए थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी, अब अंजाम कुछ भी हो युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और

फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता, लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों, भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने।

फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: करते करते
1: छाया गीत
0: लग जागने।
1: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: मेरे सपने अब
1: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
1: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे क्लैरिनेट यानी शहनाई पर फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं प्रोफेसर और दिल एक मंदिर।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर के गाए दिल एक मंदिर फिल्म के इस गाने के साथ ही इंद्रधनुष में साज और आवाज़ कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अभिलाष के लिखी नाटिका कागज के जेवर।
1: पटवारी जी, ओ पटवारी जी।
2: कौन है?
1: ओ, मैं हूँ मंगरू।
2: आती हूँ, ठहरो ठहरो।
1: पायला की पटवारी ताई।
2: जीते रहो मंगरू।
1: पटवारी जी घर में है क्या?
2: वो तो सवेरे ही मुखिया के संग जगबंदी को गए, अभी आते ही होंगे। तुम कहो आज कैसे राव भूले, बहू कैसी है?
1: अरे सब कुशल मंगल है ताई, आपका आशीर्वाद है।
2: अरे हाँ, तुझे बधाई देना तो मैं भूल ही गई। रोज इनसे कहती हूँ चलो मंगरू के घर हो आए, बहू से मिलाए, लेकिन इन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती।
1: कोई बात नहीं ताई, अब कल आ जाना।
2: लो वो आ गए।
1: राम राम पटवारी जी, राम राम।
3: आओ आओ मंगरू, आओ भाई, बहुत दिनों में आए अब।
1: जी हाँ, यूं ही समय नहीं मिला पटवारी जी।
3: अच्छा आओ आओ, बैठो बैठो, यहाँ बैठो ना। भाई मंगरू तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो भाई, सुना है घर में लक्ष्मी आई है।
1: जी पटवारी जी, अब भगवान ने कृपा की है, लड़की की शक्ल में बुढ़ाती आंखों को रोशनी दे दी है।
3: भाई मंगरू, लड़का हो या लड़की हो, है तो माँ बाप की खुशी का कारण दोनों ना।
1: इसी कारण तो मैं आपको अपनी खुशी में शामिल होने का न्योता देने आया हूँ।
3: अरे न्योता?
1: हाँ, कल मेरी बच्ची का नामकरण है, आप उसे आशीर्वाद देने जरूर आए हैं, और खाना भी मेरे यही का।
3: नहीं नहीं भाई मंगरू, नहीं इतनी तकलीफ मत करो तुम। हाँ, समय निकाल कर मैं आ जरूर
1: जाऊंगा। ऐसे कैसे हो सकता है पटवारी जी, अरे पूरा गांव दावत में शामिल हो और आप वहां

0: तो क्या तुमने पूरे गांव को दावत दी है?
1: अरे पटवारी जी, मेरा बस चलता ना तो आस पड़ोस के दो चार गांव वालों को भी दावत में बुलाता। कितनी दुआओं, कितनी मन्नतों के बाद भगवान ने मुझे औलाद दी है।
0: हाँ मंगरू, समझ सकता हूँ भाई, समझ सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये खुशी यूं भी बहुत बड़ी है, क्योंकि शादी के 12 साल बाद तुम्हारे यहाँ पहली संतान हुई है। लेकिन
1: लेकिन लेकिन क्या पटवारी जी?
0: भाई अभी कुछ ही महीने पहले भी तो करीब करीब पूरे ही गांव को तुमने दावत दी थी ना।
1: आप तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं पटवारी जी, और वो तो मेरे पिताजी का 13वां था।
0: हा? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो तो तुम्हारे पिताजी का 13वां था। और ये तुम्हारी बच्ची का नामकरण है। भाई मंगरू, तुम्हारे दिल जिगर को मान गए हम भाई, अपनी खुशी गमी में पूरे गाँव को शामिल करना कभी नहीं भूलते तुम। पानी की तरह पैसा बहा देते।
1: अरे पटवारी जी, यही एक बात तो पुरखों से सीखी है, खुशी में या गमी में खर्चे को क्या डरना।
0: ठीक कहते हो मंगरू, ठीक बात कहते हो भाई। इसी दावत के बहाने दूर पास के थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं। अच्छा, वो रूप सिंह को भी दावत दी है ना?
1: रूप सिंह?
0: हाँ हाँ, रूप सिंह।
1: छी छी छी छी छी छी, अरे किस कमबख्त का नाम ले लिया आपने पटवारी जी है? अरे उस चोटे को तो अब कोरट ही जेल की दावत देगी।
0: तो अभी तक मुकदमा चल ही रहा?
1: हाँ, बस अब फैसले की तारीख पड़ने वाली है, समझो।
0: मेरा ख्याल है मंगरू कि इस मुकदमेबाजी में तुम अपनी 3-4 एकड़ जमीन तो गिरवी डाल ही चुके होगे।
1: तो क्या हुआ पटवारी जी, बाकी 2 एकड़ भी गिरवी डाल दूंगा। अरे मैं खुद भी बिक जाऊंगा, लेकिन बच्चू को नाको चने चबवा दूंगा।
0: अरे तुम लोग सुलह क्यों नहीं कर लेते?
1: सुलह? अरे सुलह का टाइम गया पटवारी जी, अब तो बात इज्जत की है, इज्जत की।
0: देखो मंगरू, छोटी सी बात को इज्जत का सवाल बना लेना जायज नहीं।
1: अरे सब जायज है पटवारी जी, प्यार और लड़ाई में कहते सब कुछ जायज है। बस आप तमाशा भर देखते जाओ।
0: वो तो मैं देख ही रहा हूँ मंगरू, तमाशा ही देख रहा।
1: अरे ओहो पटवारी जी, अब मैं तो यहाँ बैठा ही रह गया। ओहो, अभी तो बहुत से लोगों को न्योता देना है। अच्छा पटवारी जी, ए राम राम।
0: अच्छा,
1: राम राम।
0: अच्छा राम राम भैया, राम राम।
1: ओ कल शाम को दावत में जरूर आना।
0: अच्छा अच्छा, जरूर आएंगे।
2: Yeah,

0: अरे भाई बाजे वाले, जरा गाने की आवाज ऊंची कर, बुझा दे पूरे गांव को। अरे पता तो चले मंगरू क्या खुशी हुई है खुशी।
1: तुम भी कमाल के हो भाई मंगरू, जरा जरा देर में चले आते हो। लाउड स्पीकर में जितना दम है चिल्ला तो रहा है, और क्या उसका पेट फाड़ दूं।
0: अरे अरे अरे तुम बिगड़ता क्यों है भाई, चलने दे सुसरे को अपनी चाल से, चलने दे।
1: अरे ओ फुलवा,
2: अरे तुम यहाँ खड़े हो, मैं जहाँ था तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ।
3: काहे क्या हुआ भगवान?
2: पंडित जी अभी तक नहीं आए, उन्हें कह तो आए थे ना।
3: हाँ भाई कह आया था, आते ही होंगे, अभी आ जाएंगे।
2: मैं समझी कहीं तुम भूल तो नहीं गई, मुझे तो फिक्र सा हो रहा है।
3: ओहो तू अब कोई चिंता फिक्र मत किया कर फूलवा, अरे अब तो हमारे दिन फिर गए हैं।
2: सच अब तो हमारे दिन फिर गए हैं। लली बहुत भगवान है।
3: क्यों नहीं?
2: देखो ना क्या लंबरदार, क्या पटवारी और क्या मुखिया, सारा गाँव आशीर्वाद देने आ रहा है। मैं तो उसका नाम भाग दे रखूं।
3: अरे बावली मैंने तो पहले ही उसका नाम लक्ष्मी सोचा है।
2: अच्छी लक्ष्मी भी तो भाग से ही आती है। हाँ? भाग देना बहुत अच्छा। लेकिन पंडित जी तो अभी भी नहीं आए।
3: ओहो तुम लल्ली को तैयार करो, जाओ अभी आ जाएंगे पंडित जी भी।
2: हाँ? जाओ, जाओ,
1: अरे मंगरू,
3: मंगरू ओ, क्या बात है माधो?
1: अरे चौधरी जी आ गए हैं।
3: चौधरी जी? हाँ देख मैं तो तू जरा उन्हें रोकियो, तू रोकियो जरा।
1: अच्छा मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ।
3: ठीक है मैं भी आता हूँ।
4: कष्ट करने की जरूरत नहीं मंगरू, मैं खुद ही आ गया हूँ।
3: बड़ी कृपा की आपने चौधरी जी, बड़ी कृपा की, बड़े सही वक्त पे आया। आइए आइए बिना जी।
4: बड़े जोर की दावत कर रहे हो मंगरू।
3: सब आपका आशीर्वाद है मालिक। मैं कल हवेली गया था न्योता देने, अब पता चला आप
4: मेरी रकम दे रहे हो ना
3: जी।

0: क्यों खामोश क्यों हो गए मंगरू, जवाब दो।
1: मैं माफी चाहता हूँ चौधरी जी, कैसे कि वो रुपए तो सब
0: तुमने दावत के ढकोसले में खर्च कर दिए हैं, यही ना, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए मंगरू। मैंने जरूरत के वक्त तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही बेवकूफ बनाते आ रहे हो।
1: विश्वास कीजिए चौधरी जी, विश्वास कीजिए, मैं आपकी रकम जल्दी लौटा दूंगा।
0: कब लौटा दोगे? पिछली बार देने का वादा किया तो तुम्हारे पिताजी का तेरहवां आ गया, फिर तुम कोर्ट कचहरी में धंसते गए और अब तुम्हारी बच्ची।
1: ओ चौधरी जी, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपकी पिपाई चुका दूंगा। धर्म से धर्म,
0: बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं।
1: चौधरी जी, मालिक मालिक,
0: तुम्हारे घर पर पूरा गांव जमा है, आज अगर तुमने रुपए न दिए तो तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा।
1: नहीं नहीं नहीं चौधरी जी, नहीं, मुझ पे दया कीजिए, दया कीजिए।
0: उस पर की जाती है जो उसके काबिल हो, तुम्हें तो जितना बेइज्जत किया जाए कम है।
1: मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मालिक, मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। आप पटवारी जी, पटवारी जी,
2: भैया अपनी सीमा से ऊंचा उड़ने वाला पक्षी इसी तरह धरती पर गिरता है, समझे? चादर जितने ही पांव पसारते तो नंगे तो ना होते। कितने रुपए हैं आपके चौधरी जी?
0: 3,000।
2: ठीक है, मैं कल आपको इतने रुपए भिजवा दूंगा।
0: जी आप?
2: हाँ मैं, मुझ पर विश्वास नहीं है क्या?
0: ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी, आपने कह दिया, समझिए मुझे रुपए मिल गए। अच्छा मैं चलूं, राम राम, मैं चलता हूँ, जय राम जी की।
2: अच्छा भैया, जय राम जी।
1: पटवारी जी, आपने आपने पूरे गांव के सामने बेइज्जत होने से मुझे बचा लिया। पटवारी जी, भगवान आपका भला करे, भगवान आपको।
2: तुम्हारा भला कैसे होगा, तुम तो खुद ही अपना बुरा करने पर तुले हुए हो। अपना भला चाहते तो पूरे गांव की दावत का बोझ ढोने से पहले तुम कर्ज का बोझ उतारते हैं?
1: मैं बह गया था पटवारी जी, बिटिया की खुशी में।
2: अरे खुशी आदमी को कभी नहीं बहकाती मंगरू, खुशी नहीं बहकाती कभी भी आदमी को। हाँ, आदमी में इतना हौसला होना चाहिए कि वो उसे बर्दाश्त कर सके। खुशी तो मन का एक भाव है भैया, जिसमें जीवन समरता है, बिगड़ता कभी नहीं।
1: मैंने सचमुच बहुत बड़ी भूल की पटवारी जी, बहुत बड़ी।
2: और एक भूल तुमने और भी की है? जिस पर तुम अभी तक अपनी जिद से अड़े हुए हो।
1: नहीं, वो क्या पटवारी जी है?
2: देखो, रूप सिंह पर किया तुम्हारा मुकदमा, क्या
1: पर गलती उसी की पटवारी जी।
2: लेकिन इसमें नुकसान तो तुम्हारा है ना भाई, नुकसान तुम्हारा है, गलती चाहे जिसकी है। अभी तक तुम 4 एकड़ जमीन उसी चक्कर में खो चुके हो। और अब मैं समझता हूँ कि फैसला होने तक बाकी की जमीन भी उसी में चली जाएगी।
1: तो मैं क्या करूँ, क्या करूँ पटवारी जी?
2: देखो,
1: क्या करूँ,
2: रूप सिंह से समझौता करो भैया।
1: लेकिन
2: कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी में कभी किसी का भला नहीं होता मंगरू, कभी किसी का भला नहीं होता कोर्ट कचहरी में। जीतने वाला भी रोता है, हारने वाला भी रोता है।
1: हाँ।
2: देखो तुम इरादा कर लो, रूप सिंह को मैं समझा लूंगा। है
1: ठीक, ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा पटवारी जी, और भगवान जानता है जल्दी से जल्दी आपके रुपए भी लौटा दूंगा।
2: कौन से रुपए भाई?
1: वही जो कल आप मेरी तरफ से चौधरी जी को देंगे।
2: उन रुपयों को मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है मंगरू।
1: काहे?
2: वो इसलिए कि रुपए उन्हें मैं नहीं दूंगा, तुम खुद ही दोगे।
1: मैं कहां से दूंगा, मेरे पास तो।
2: अच्छा ये लो मंगरू,
1: ये क्या कागज?
2: हाँ,
1: ये कैसे कागज है, कैसे कागज है?
2: मंगरू, अरे ये कागज नहीं, कागज के जेवर हैं मंगरू, कागज के जेवर जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की ओर से आज मैं तुम्हारी बेटी को देना चाहता हूँ।
1: मैं समझा नहीं पटवारी जी, समझा नहीं मैं।
2: अरे ये राष्ट्रीय बचत पत्र है। क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र है? ये तुम्हारे पिता हर साल मुझसे खरीद कर मेरे ही पास रख दिया करते थे।
1: लेकिन ये राष्ट्रीय पत्र वो क्यों लेते थे पटवारी जी?
2: क्योंकि वो छोटे आदमी के लिए बचत का महत्व समझते थे, और वो ये भी जानते थे कि छोटों का जीवन स्तर उठाने की दिशा में सरकार

0: कई कदम उठा रही है, जिनमें से एक ये भी है।
1: अच्छा, वो किस तरह?
0: वक्त पूरा हो जाने पर इन बचत पत्रों पर खर्च की गई रकम सरकार ब्याज सहित वापस लौटा देती है।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब देखो, तुम्हारे पिता के इन 7 बचत पत्रों का समय पूरा हो गया है।
1: अच्छा।
0: कल ही तुम्हें डाकघर से 11,000 रुपए मिल सकते हैं।
1: 11,000?
0: हाँ भाई।
1: सच सच कह रहे पटवारी जी?
0: हाँ भाई, तुम कल ही इन बचत पत्रों को लेकर डाकघर चले जाओ। और रुपया मिल जाने के बाद?
1: अरे सबसे पहले तो मैं चौधरी का कर चुकाऊंगा, उसके मुंह पे दे मारूंगा, अरे जमीन छुड़वाऊंगा। और
0: लेकिन अब फजूल खर्च मत।
1: अरे अरे मेरी तौबा पटवारी जी, अरे अब तो हर बरस मैं बिना भूले राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदूंगा। जब मेरी बिटिया सयानी हो जाएगी तो उसकी शादी में ये कागज के जेवर दूंगा।
0: इन्हीं जेवरों से उसका जीवन, उसका भविष्य संवरेगा। तुम्हें तुम्हारे इरादों में भगवान सफलता दे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद पटवारी जी। कागज के जेवर।
2: अजी मैंने कहा, अजी देखिए तो पंडित जी आगे हैं, जल्दी से चलिए।
1: आगे पंडित जी? हाँ, चलिए। आइए पटवारी जी, आइए आइए।
0: चलो चलो।
3: कागज के जेवर, हवा महल के अंतर्गत अभी आपने अभिलाष द्वारा लिखित ये नाटिका सुनी। प्रस्तुतकर्ता पुरुषोत्तम दारव्हेकर।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं के गाए इस गाने से। इसे लिखा है सईद कादरी ने, संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है तुम मिले।

0: अभी आपने श्री राम और शिल्पा राव की आवाजों में ये जवानी है दीवानी फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत प्रीतम का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे
4: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
3: तो लेन देन
4: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
3: ओ
4: जैसे UPI से।
3: अच्छा
4: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
4: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: आम भी ना मम्मी जी।
5: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
6: हर लेन देन अब है आसान।
7: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक PM आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
8: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
9: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
10: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में हमारी अधूरी कहानी फिल्म का ये गाना। गीत रश्मि विराग ने लिखा है, संगीत जीत गांगुली का है।

0: इस गाने के साथ ही चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से

0: ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं।

0: किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
1: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
2: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं बॉबी फिल्म के इस गाने के साथ। इसे गाया है शैलेंद्र सिंह ने, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आंधी फिल्म का गाना। गीत गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जॉनी मेरा नाम फिल्म का गाना। गीत इंदिवर ने लिखा, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।
1: नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं,

आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मनोहर उदास की आवाज़ में अभिमान फिल्म का गाना। गीत मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है, संगीत से सवारा है एस डी बर्मन ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बरसात की रात फिल्म की ये कव्वाली सुनकर याद आ जाता है वो जमाना जब फिल्में तो ब्लैक एंड व्हाइट होती थीं, मगर उनकी कहानियां जीवन के जज्बाती रंगों से भरपूर। और याद आता है वो कलाकार जो अपने सुदर्शन व्यक्तित्व और सीधे सरल परंतु प्रभावी अभिनय से दर्शकों के दिलों पर छा जाता था।

सन 1920 के जून महीने की 14 तारीख को मेरठ में जन्म हुआ भारत भूषण का। पिता राय बहादुर मोतीलाल सरकारी वकील थे। भारत भूषण बस 2 ही वर्ष के थे जब उनकी माता का देहावसान हुआ। मां के गुजरने के बाद बड़े भाई आर चंद्रा के साथ भारत भूषण अपने दादाजी के यहाँ अलीगढ़ चले आए।

अलीगढ़ में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के पश्चात भारत भूषण पिता की मर्जी के खिलाफ एक्टिंग में करियर बनाने के लिए पहले कोलकाता और बाद में मुंबई आकर बस गए। केदार शर्मा निर्देशित 1941 की फिल्म चित्रलेखा में भारत भूषण को अभिनय का पहला

0: के थे।
1: संघर्षमय जीवन का एक दशक बीता और 1952 में भारत भूषण को फिल्म मिली बैजू बावरा। इस फिल्म ने उन्हें आनन फानन सुप्रसिद्ध फिल्म सितारों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद, नायिका मीना कुमारी और पार्श्व गायक मोहम्मद रफी को जितनी तारीफें मिली, उतनी ही तारीफ और शोहरत भारत भूषण को भी नसीब हुई। मानो प्रतिभा की गंगा और किस्मत की जमुना का मिलन होना था, हो गया।

बैजू बावरा की अपार सफलता के बाद सिलसिला चल पड़ा। एक के बाद एक फिल्में आती गईं। भारत भूषण अपने अभिनय से किरदार सजाते गए और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1952 से 1954 तक रिलीज हुई ये फिल्में हैं आनंद मठ, माँ, मिर्जा गालिब, शबाब और श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु इस फिल्म के लिए भारत भूषण को सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके समकालीन अभिनेता और निर्माता चंद्रशेखर कहा करते थे, हिंदी फिल्मों में यदि पौराणिक या ऐतिहासिक पात्र कोई सबसे अच्छा निभाते हैं तो वो है अभिनेता भारत।

0: विभूषण केवल अभिनेता नहीं थे, उन्हें किताबों का बहुत शौक था। विभिन्न विषयों की किताबें वो पढ़ते रहते थे और शायद यही वजह थी कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। बरसात की रात, नई उम्र की नई फसल, बसंत बहार और दूज का चांद आदि फिल्मों की कहानियां उन्हीं की लिखी हुई थीं।
1: स्वप्न झरे फूल से।

0: देखते रहे।
1: बसंत बहार, कवि कालिदास, परदेसी, रानी रूपमती, चंपा कली, गेटवे ऑफ इंडिया, फागुन, सम्राट चंद्रगुप्त, सोहनी महिवाल, सावन, अंगुलीमाल, बरसात की रात, मुड़मुड़ के न देख, घूंघट, संगीत सम्राट तानसेन, 11,000 लड़कियां, जहां आरा, तकदीर। 1950 और 1960 के दशक की इन फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने वाले भारत भूषण उन गिने चुने अभिनेताओं में से थे जिन्हें संगीत की बहुत अच्छी समझ थी, और इसीलिए अधिकतर संगीत प्रधान फिल्मों के नायक के रूप में उनका चुनाव किया जाता। दूज का चांद इस फिल्म के वो निर्माता भी थे। उस जमाने के मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मुकेश और तलत महमूद के गाए ज्यादातर गीत भारत भूषण पर फिल्माए गए।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए FCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
8: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
9: हमारी माँ बहनों का गौरव, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: आज के फनकार अभिनेता भारत भूषण पर केंद्रित ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत जयंत पात्रीकर को।
1: आज के फनकार।

छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जब थामा था तुम्हारा हाथ तो हमने तुम्हारी खुशियों को टांक लिया था अपने दामन में सितारों की तरह, और तुम्हारी उलझनों को अपना लिया था हमने। माथे की सिलवटों और होंठों की मुस्कानों को अपना बनाया था। उसके बाद से ये साझेदारी है सांसों की, ये सफर है एक साथ चलने का। फिर क्यों उदास हो तुम?

सोचा नहीं था कि आएंगे ऐसे भी मरहले कि हम नहीं रहेंगे, हम खुद के बस में नहीं रहेंगे, कि अचानक रोशन हो जाएंगे रास्ते, अचानक चमकीले हो जाएंगे सितारे, अचानक दिल में उठा करेंगी हिलोरें। ये कौन सा मकाम है, ये हमें क्या हो गया है।

0: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: कैसी कैफियत है दर्द और सुकून का, ये कैसा मिला जुला एहसास। अब बदलते हुए मौसम और भी सुहाने बन गए हैं, अब जिंदगी और भी सुकून भरी बन गई है।

आंखें किसका इंतजार करती बेकरार हुई जाती हैं। क्यों बेचैनी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, क्यों हम मदहोशी की हालत में जिए जा रहे हैं आजकल।

बदलते मौसमों के साथ अचानक बदल गया दिल की दुनिया का मौसम। जहां पहले बहारें थीं, वहां अचानक वीराने हैं। मुस्कानों को झांक लिया है उदासी के कोहरे ने। अपनी खिड़की पर खड़े हम अपनी सोच में गुम हैं और गुंज रहा है सुरैया का ये नगमा।

वक्त मजमा लगाता है, खेल दिखाता है और फिर समेट कर अपना सरो सामा चल पड़ता है अगली मंजिल की तरफ। हम भोले भाले हैं जो सोचते हैं कि ये मजमा जारी रहेगा हमेशा, हमेशा गूंजते रहेंगे तराने।

0: फिल्म मिर्जा गालिब गुलाम मोहम्मद फिल्म अफसर पंडित नरेंद्र शर्मा सचिन देव बर्मन
1: चले दिल की दुनिया जो बर्बाद करके बहुत रोएंगे उनको हम याद करके
0: फिल्म दर्द शकील बदायूनी नौशाद आज का छाया गीत इतना ही इजाजत दीजिए यूनुस खान को
2: छाया गीत इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती भारत का गम एक्सपर्ट
3: वीको टर्मरिक

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: FM एंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी उदयपुर का विविध भारतीय केंद्र है। FM रेडियो लेक सिटी। रात्रि के 11 बजे हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य

0: ने वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India